0: मुझे तेरा तारनहारा गीत को हम सुन करके और कार्यक्रम में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सिंह जी भारत से। राजेंद्र जी, ये वृतांत आगे के ओर ले चलिए, ये वृतांत को और भी आगे को और सुनाइए।
1: जो हमारा वृतांत चल रहा था वो बात चल रही थी यमराज पृथ्वी पर, पृथ्वी से जो लोग जाते यमलोक को, वहाँ जो लेखा जोखा होता है, उसके बाद यमराज उनको अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाले को नरक भेजता है। तो किस किस प्रकार के कर्म होते हैं श्री के अनुसार, नंबर एक पे जो बात आती है विवाह के बाहर किसी से शारीरिक संबंध बनाना, वो नरक में जाता है। धोखाधड़ी या किसी की संपत्ति हड़प करना, नरक का वासी हो गया। आत्महत्या करना, जो अपना आप अपनी आत्महत्या कर लेता है वो भी नरक जाता है। अकाल मृत्यु, यानी अचानक कोई मर जाए, जैसे किसी जानवर द्वारा या किसी दुर्घटना में मारा जाना आदि। अकाल मृत्यु स्वयं मनुष्य के लिए कुछ विशेष कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं, यानी अगर किसी ने मार दिया किसी को, अकाल मृत्यु अचानक मर गया तो वो नरकवासी हो जाता है। कैसे? प्रेत योनि प्राप्त करने के पीछे के कारण की व्याख्या इस प्रकार की जाती है, जब कोई जीव मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसके कर्मों आदि के अनुसार उसका एक समय तक पृथ्वी पर रहना अपेक्षित हो जाता है। यमराज जब मनुष्य के सभी कर्मों की समीक्षा करते हैं और उसमें यह पाते हैं कि जीव उस अपेक्षित समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब उस जीव को बाकी समय के लिए प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ता है। जैसे कि भगवान ने 100 वर्ष की उम्र किसी को दी, या 120 वर्ष की तक है आजकल कलयुग में, या 80 वर्ष है, या 90, जितने भी जिसको उम्र मिली है, और उससे वो पहले मर जाए तो जब तक वो पूरा ना हो जाए वो समय, तब तक वो प्रेत योनि में भटकता रहेगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी पूरी उम्र तक पूरी बितानी चाहिए कि उसकी, तो उसको वैसी स्थिति में कई सालों तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। प्रेत योनि एक सूक्ष्म शरीर होता है। प्रेत योनि में करते समय मनुष्य किसी होता है कि मनुष्य की ये भी हो जाए, मेरा वो हो जाए, सब वैसे होता है। यहाँ तक कि भोजन आदि की इच्छाएं भी वही होती है। भोजन जो करते हैं हम लोग, ये खा लूं वो खा लूं, उसकी इच्छा भी प्रेत की वैसी होती है। प्रेत योनि में वह सभी कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता है। इसलिए अगर मनुष्य के रूप में उसकी कई इच्छाएं अपूर्ण रह गई हो तो प्रेत योनि में उस मनुष्य को अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। यानी मनुष्य की जो इच्छा है वो अपने जीते जी पूरी होनी चाहिए। अगर कोई रह गई तो वो सूक्ष्म शरीर इच्छाएं करता है लेकिन शरीर तो है नहीं जो इच्छाएं पूरी कर सके, इसलिए वैसे ही रह जाती है। फिर उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य का या किसी का, फिर वो इच्छाएं वहां पे पूरी होके तभी उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। जब प्रेत योनि में उसका समय समाप्त हो जाता है जितना कि मनुष्य के रूप में उसे पृथ्वी पर रहना था, तब उस आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कभी आत्महत्या जैसा कर्म नहीं करना चाहिए। पहले

0: चाहे मरे किसी भी कारण से, अपना पूरी उम्र को जिए इसके बाद मरे, या तो आत्महत्या के संदर्भ में था, लेकिन कुछ दूसरे पाप करने वाले भी प्रेत योनि में जाते हैं, उनका प्रेत योनि में रहने का समय अपने पाप के अनुसार होता है। जो ज्यादा पाप करते हैं वह लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं, जहां वे अपनी इच्छाएं को पूरा करने के लिए तड़पते हैं। भगवान के भक्तों का अर्थ क्या होता है, तो क्यों ना हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े और इसके बाद भगवान के जो भक्त है उनका अर्थ क्या है उसको समझेंगे।
1: सुनने वालों, जैसे कि राजेंद्र जी ने अभी हम सबको ये सुंदर संदेश, ये ज्ञान भरी संदेश ना, ज्ञान भरी संदेश और जो सुनाए, और हम सब एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर हम सब आपके साथ जुड़ जाएंगे।
2: उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और वो भी जो हमने अभी सुने हैं राजेंद्र जी जो कहा कि जो इच्छाएं हैं अगर इच्छाएं पूरा ना हो और हम देह छोड़ दें ना, तो इच्छाएं के बदले हमको भोगना पड़ता है। तो ये इतना अच्छे से राजेंद्र जी हमने बताए, हमको बताए, तो ऐसा क्यों ना करें कि जो इच्छाएं हैं, कि जो इच्छाएं हैं हमके, वो अभी से थोड़ा से कम करें, ताकि मरने के बाद उतना दिक्कत ना रहे। मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, अगर हम जीते जी अपने होश हवास में जब हम अपना इच्छाएं थोड़ा कम करें उम्र के हिसाब से, तो हम मैं सोचती हूँ तो उसमें तो और आनंद होगा।
1: तो राजेंद्र जी, इस पे जरूर मैं कुछ और कहना चाहूँगा। ऐसा हुआ कि गत दिनों एक हमारे बुजुर्ग हमें मिले और हम उनसे बात कर रहे थे, तो हमने उनसे बात कर रहे थे तो उनसे ये प्रश्न रखा कि कैसे है आपका स्वस्थ, यानी कि स्वास्थ्य, यानी कि कैसे खसौन थे थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा, ये श्वास जो है, जो खसौन थे थे, ये अपना ही किए हुए कर्म का फल है। आज दवा लेकर खा रहे हूँ, पर किसके पास जाऊँ इसके लिए शिकायत लेकर। ये सब जो हमारा हो रहा है, ये सब हमने ही बोया है। उन्होंने कहा, जो सुंदर सा शरीर जो हम सबको प्राप्त हुआ है ना, इसका आर्किटेक्ट जो हम खुद है, हम इसे किस प्रकार से और उनके और बनाएंगे, ये हमें खुद को और इस पे ध्यान देना चाहिए। शांता जी कहते हैं कि अपना कर्म के माध्यम से। शांता जी, ये बिल्कुल इसी प्रकार से उन्होंने हमें संदेश दिया, और किस प्रकार से आप उसे और निर्माण करेंगे, किस प्रकार से आप जो बोएंगे उसका फल जो बाद में होता है, तो आप काटेंगे तो वो आप पे निर्भय होता है। तो सुनने वालों, ऐसा एक व्यक्ति जो हमें अपना ओर से, उन्होंने कहा कि चाहे कौन भी ग्रंथ आप पढ़ो, रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, और सब यही देता है कि वही बोना चाहिए जिसका फल हमें बाद में तो काटना पड़ेगा। एक परिपक्व व्यक्ति बनना चाहते हो तो ऐसा फल लगाओ जिसका फल जो बाद में मिलने वाला है मीठा रहे। शांता जी, जो एक गीत के ओर बढ़ चले हैं, तो गीत के ओर हम बढ़ते हैं सुनने वालों, और गीत के बाद हम सब फिर मिल जाएंगे आपके साथ।

0: शांता जी,
1: हाँ जी,
0: देखिए ना, हमें फिल्मों से भी कितना संदेश मिल जाता है।
1: बिल्कुल सही
0: सही बात, फिल्में अच्छी बातें भी सिखा देती हैं और बुरी बातें भी सिखा देती हैं।
1: बिल्कुल, कौन ज्ञान आप उसमें निकालना चाहते हैं।
0: सही बात, आप अच्छा ज्ञान निकालना चाहते हैं कि बुरा ज्ञान निकालना चाहते हैं।
1: ऐसे ऐसे इंटरनेट से भी, यूट्यूब में भी, आप टिकटॉक में, जो भी है मीडिया में, आप अच्छे बुरे ये आप पे निर्भर है, आप कौन से चाहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही बोला।
1: गीत में भी,
0: हाँ जी
2: राजेंद्र जी, हम सब ये संदेश सुने और ये कहना चाहूँगा शांता जी, ऐसा हुआ एक व्यक्ति ने एक स्थान से गए, वहाँ बहुत सा चप्पल था ना, ढेर सारे चप्पल था, और वहाँ वो जा करके और खड़े हो गए और परेशान हो रहे हैं कि मरे यहाँ इतने सारे चप्पल है, ये दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है देखो। और ये देखते देखते कहते कि देखते तो सब अपनों की तरह है, यानी कि उसी की चप्पल की तरह है, लेकिन अपना कौन है उसको खोजना बहुत मुश्किल है। राजेंद्र जी, आगे का संदेश क्या है?
3: जो हम लोग बात कर रहे थे यमराज की और भगवान के भक्तों की, तो आगे आगे का जो संदेश है वो यही है कि भगवान के भक्तों का क्या होता है। यानी अब तक हमने जो बात करी है वो अकाल मृत्यु या कोई समय से पहले मर जाता है तो उसका क्या होता है, अब जो भगवान के भक्त है उनका क्या होता है, ये संदेश है। भगवान के भक्तों को मृत्यु के बाद किसी प्रकार की यातना नहीं झेलनी पड़ती, यानी उसको कोई दिक्कत नहीं आती मृत्यु के बाद, न यमराज वो जाना पड़ता है, नरक में नहीं जाना पड़ता है, वो सीधा डायरेक्ट वैकुंठ में जाता है। भगवान के भक्त को यमराज के दूत नहीं बल्कि भगवान के अपने दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत उस जीवात्मा की घर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं और बहुत आदर के साथ भगवान के धाम लेकर जाते हैं, जहां वह जन्म और बंधनों से मुक्त अलौकिक जीवन जीता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यह वचन दिया है, कौन्तेय प्रतिजानिया न मे भक्तः प्रणश्यति, यानी हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, जो मेरा भक्त है उसका पतन कभी नहीं होता, वो कुमार्ग पे भी नहीं जाता, वो डायरेक्ट वैकुंठ लोक पे ही आता है, और हम अपने स्वयं दूत लेने के लिए उसको भेज लेने के लिए उसको अपने दूत भेजते हैं, और वो लंबी समय तक, मतलब पूर्ण जब वैकुंठ चले जाता है कोई तो वापिस नहीं आता, वहां से वहीं वो रहता है। इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसलिए चाहे जो शिक्षा ये है यहाँ पे कि अच्छे काम करने चाहिए, चाहे तो किसी भी युग में रहें, कलयुग में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन सतयुग का काम अगर कलयुग में हो रहा है तो कलयुग की कोई असर ही नहीं आएगा, सतयुग का असर आता है उसमें। तो अच्छे काम करेंगे तो कलयुग भी सतयुग हो जाता है, और बुरे काम करेंगे तो सतयुग भी कलयुग जैसा अनुभव होता है। इसलिए हर समय हमें अच्छे कार्य ही करने चाहिए, तभी हमको भगवान की भक्ति मिलेगी, और जो भगवत धाम है, वैकुंठ लोक है, वो तभी मिल सकता है जब हम अच्छे कार्य करेंगे, और अच्छे कार्य करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, और करना चाहिए, प्रयत्न करने से ही नहीं करना भी पड़ेगा, और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। यही संदेश जो भगवान के भक्तों के लिए है, और सब लोग भक्त बनना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भक्त नहीं बनना चाहते। मैंने देखा है नीदरलैंड में कि हर मंदिर में, हर से बड़ी बड़ी जगहों में जो हवन इत्यादि होता है उसमें लोग जाते हैं और वो चीज करते हैं कि वो भक्त बने रहें भगवान के, और कोई बड़ा गुरु आता है तो उसके पास भी जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्यक्रम करने चाहिए। और अभी जो भारत में भी यात्राएं होती है, जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, उसमें काफी समय लगता है, लोग जाते हैं, और कुछ लोग अभी पूछ भी रहे थे कि कैसे जाना है, क्या करना है। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको उन अपने जो आराध्य हैं, जैसे कुछ लोग विष्णु भक्त हैं तो बद्रीनाथ जाते हैं, शिव भक्त हैं तो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, और गणेश भक्त हैं तो वो भी गणेश गुफा के द्वार में जाते हैं, या महाराष्ट्र में जाते हैं ज्यादा करके, तो अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार के जो भक्त हैं उस दिशा में लोग जाते हैं, और जो लोग जाना चाहते हैं इन दिशाओं में वो पता कर सकते हैं भारत के, गूगल कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति को जो जानता है। नीदरलैंड में भी मैंने देखा है लोग इस बारे में बातचीत करते हैं कि इस बार यात्रा जाना है, इसे जाना है, तो पता जा सकते हैं और अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं और भगवान के लोक को प्राप्त हो सकते हैं। जी संजय जी,
2: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने राजेंद्र जी जो इतना और अच्छा संदेश हम सबको लिए रखे, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से हम भक्त बन सकते हैं, ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें मुझे ये लगा कि हम आए हैं, कभी जब वो समय आ जाता है, दुख के घड़ी आ जाता है, तो हम उसमें डगमगाने लगते हैं, हम उसमें औरों के खोजने लगते हैं, और जबकि आज अपना ही बोया हुआ हम काट रहे हैं और शिकायत करते रहते हैं कि औरों को वो नहीं ठीक किया, औरों के ओर उंगली दिखा रहे हैं, पर सब तो अपना ही किए हुए कर्मों का फल कहा जाता है। हम इस पे क्या कहे, हम तो बस सुने हुए हैं और इसे आपके लिए रख दिया जाता है। पर शांता जी, इस पे मुझे अच्छा लगता है कि आप फटाफट और दूसरा गाना लगा देते हैं। राजेंद्र जी, उस गाने के ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि राजेंद्र जी आज तो बात हुआ था कि सूरीनाम हमारा प्यारा देश तो चलाना ही है।
3: हाँ, सूरीनाम हमारा प्यारा देश, जब हम सुनते हैं गाना तो लोगों को लगता है कि जो प्रोग्राम है उसका सूरीनाम हमारा प्यारा देश, सब लोगों को, क्योंकि सब लोग ज्यादातर के सूरीनाम के लोग ही इस कार्यक्रम को सुनते हैं, और उनका जो देश है सूरीनाम है, वो प्यारा देश है, तो वो तो होना ही चाहिए।
2: तो चलते हैं, पहले फिल्म मदर इंडिया से निकाला गया, दुनिया में हम आए हैं तो जीना पड़ेगा, और जीना किस प्रकार से पड़ेगा, फिर उसके बाद में कार्यक्रम में हम सब फिर जुड़ जाएंगे।

0: मॉडर इंडिया से निकाला गया ये गीत, और हम सब चलाए कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और बबली जी, अभी आप कुछ कह रहे थे कि
1: संजय जी पूछ रहे थे आप मॉडर्न इंडिया बनने वाला है।
2: नहीं, मैंने कहा मदर इंडिया एक ही बनी है, दोबारा नहीं बननी चाहिए।
1: हाँ,
0: ऐसा जो असली होता है ना।
2: हाँ, कहते असली असली है, नकली नकली अगर कॉपी करेंगे तो वो चीज़ नहीं बन पाती जो पहली फिल्म में होता है।
0: ऐसा तो राजेंद्र जी, भारत में तो कितना फिल्म का डबलिंग हुआ है, यानी कि डबल बना है, सीता गीता जैसे देखा जाए।
2: लेकिन हाँ, सीता गीता की तरह बहुत डबल रोल बना है, लेकिन जो सीता गीता की बात है वो दूसरी फिल्मों में नहीं है,
0: जो जिसमें हेमा मालिनी जी पंखा पे और बैठ गए थे।
2: हाँ जी।
1: और टाई टाई टाई बात करते
0: हैं। हाँ। टाई टाई टाई बात करते हैं, वो ऐसा नहीं बन पाया फिर। हाँ, दोबारा
2: अब जैसे डॉन बन गई, अमिताभ की डॉन थी, अब शाहरुख खान की डॉन बनी, लेकिन वो बात नहीं जो एक फिल्म में होती है,
1: जो असली डॉन में है।
2: हाँ।
1: जैसे हमें।
2: सही बात।
0: राजेंद्र जी, आज का संदेश में जैसे कि आपने रखा कि लोग को किस प्रकार से और भक्ति के मार्ग पे जाना चाहिए, ये एक बड़ा सरलता से आपने रखे। सुनने वालों, हम सब भी कुछ और इसी प्रकार के गीतों से भी कार्यक्रम में और चला देते हैं, ताकि उसमें भी कुछ संदेश मिल सके आपको। बबली जी, आप कुछ और हम सब के लिए रखने वाले थे।
2: हाँ, मैं कुछ थोड़ा सुनाने वाली थी,
0: तो जरा सुना दीजिए।
2: हाँ जी, जरूर। ये दुनिया है माया नगरी, देखकर लो फसाएगी, बाँ सुरीले शब्दों के ये तुझ पे खूब चलाएगी, कर देगी माया का दीवाना, कैसे तू बच पाएगा, बंद मिलेंगे सब दरवाजे, वक्त बुरा जब आएगा, कर ले भरोसा मेरे काना का, वो ही साथ निभाएगा।
1: वाह वाह बबली जी,
0: अच्छा संदेश जो बबली जी भी हम सब के लिए रखे। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, शांता जी जो अगला गीत भी रख चुके हैं उस ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को राजेंद्र जी का, जो मैं देख रहा हूँ कि उधर से उंगली उठा लिए है राजेंद्र जी की, वही गीत रखो जिसका इंतजार है कि सुरीनाम हमारा प्यारा देश। हम लोग वही गीत की ओर बढ़ेंगे, आप खुद ही अनाउंस कीजिए।
3: सुरीनाम हमारा प्यारा देश।

0: सुनने वालों, राजेंद्र सिंह जी जो भारत से ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, तो राजेंद्र जी अपना संदेश रखिए।
1: हाँ, जो सूरीनाम हमारा प्यारा देश है, लोगों ने सुना और लोगों को याद दिलाता है। जैसे बहुत सारे लोग सूरीनाम से आ गए और जब नीदरलैंड में हॉलैंड में आ जाते हैं तो सूरीनाम का कुछ लोग याद तो रहता है लेकिन कभी कभी थोड़ा भूल जाते हैं, तो इस गाने के माध्यम से जब लोग सुनते हैं तो दोबारा उनको याद आता है। जैसे कि हमारे मौसा जी अभी कह रहे हैं कि चलो सूरीनाम, तो फिर ऐसे ही याद दिला देता है ये गाना सूरीनाम हमारा प्यारा देश। और इसके बाद जो हमारा गाना होता है लागी छुटे ना सनम, अब तो जब लागी छुटे ना सनम हम गाना चलाते हैं तो लोगों को याद आता है कि अब हमारा समय जो है पूर्ण विराम का हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो पावन हिंदुस्तानी के श्रोताओं को जो कि हमारा कार्यक्रम इतने अच्छे से सुनते हैं। पावन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम जो कि ज्योति का प्रकाश है और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, इस चीज को और लोगों को भी शेयर करते हैं और लोग सुनते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे संदेश थे, जौ का पानी और भगवान के भक्त और स्वर्ग नर्क की बात थी। हम लोगों के नया नया कार्यक्रम हर बार देता है कि कैसे क्या होना चाहिए। हम लोग हमारे जो खोजी सेना है उसको खोजती है, भक्ति और विश्वास में बात चल रही थी। इसके बाद सूरीनाम के लोग जो भक्ति ज्यादा ही करते हैं और विश्वास उनको पूर्ण होता है, भारत के लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं और विदेशी लोग भी करते हैं, मैंने देखा है। तो ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

हाँ सुनने वालों, आपने सुने ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम जो यहाँ से आपके लिए नशर किया गया है, और यहाँ से मैं आपसे भी नमस्कार कहने चाहती हूँ और ये ज़रूर कहूँगी कि जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आते हैं वक्त नहीं। स्वीकार कीजिए सभी का शांत की प्यार भरी राम राम।

सुनो वालों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोगी शांता खेमाई जी, बबली आसरा जी, भारत से सही राजेंद्र सिंह जी, सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है और आशा ये रखता हूँ कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आपके पास और पहुँचे होंगे। मैं हूँ आपका सेवक संजय और ये जरूर कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक नमस्कार प्रस्तुत करता हूँ।

रहने वाला और वफाए देख ली। ये दो सुंदर सा गीत मुकेश साहब की आवाज़ में हमने यहाँ से श्रवण किए सुनने वालों, और मैं सोचती हूँ कि आपको कुछ मुकेश जी के गाने यहाँ से आपको सुनाएंगे। खुली फिजाओं में प्यार की दो परिंदे इस कदर उड़ने लगे, अब इस जहां में लौटने की उन्हें फुर्स

आज ये अफसाना लिख रही हूँ, सुनाई हमको उमा देवी। उमा देवी जो फिल्मों में उन दिनों फिल्मों में भी काम कर रही थी और हम उनको जानते थे टून टून की नाम से। आज नहीं तो कल उसे ये एहसास ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल उसे ये एहसास तो ज़रूर होगा कि बड़े नसीब से मिलते हैं फिक्र करने वाले।

0: गीत से गीतकार याद आ गया। मरने वाला कितना प्यार करता होगा उस लड़की से।
1: जी हाँ, सुनने वालों, मुकेश जी की आवाज में

जाते हैं दिल में लोग इस कदर, उतर जाते हैं दिल में लोग इस कदर, जिनको हम दिल से निकाल ले, जिनको हम दिल से निकालने तो जान निकल जाती है।

जी करता है बस सुनते ही जाए फिल्म आबरू से निकाला गया ये सुंदर सा नगमा। और इस नगमा में जो कितनी खूबसूरत से भी फरमाए मुकेश जी।

नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने मिलकर और श्रवण किए फिल्म का नाम सफ़र 1970 तक के ये सुंदर सा फिल्म है। कुछ नशा तेरी बात का है, कुछ नशा तेरी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है, हमें तुम यूं ही पागल मत समझो, हमें तुम यूं ही पागल मत समझो, ये दिल पर असर पहली मुलाकात का है।

दिया दर्द लिया, ये मोहब्बत है जनाब, ये मोहब्बत है जनाब, कितनी भी तकलीफ दे मगर सुकून भी उसी के बाहों में मिलते हैं। तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाऊं, तेरी बाहों में बेजान हो जाऊं। ऐसी नज़ाकत है तेरी सूरत की, ऐसी नज़ाकत है तेरी सूरत की कि मैं तो तेरा गुलाम हो जाऊं।

मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, रफी जी की आवाज में। दूर रहकर भी चाहत बेमिसाल हो सकती है, दूर रहकर भी चाहत बेमिसाल हो सकती है, इश्क कभी मुलाकातों का मोहताज नहीं होती। मोहब्बत से बनी जयमाला के पहना कर सारी खुशी तेरे दामन में सजा दूंगा। मोहब्बत की बनी जयमाला, मोहब्बत से बनी जयमाला पहना कर सारी खुशी तेरे दामन में सजा दूंगा। तेरी मोहब्बत के सजदे में खुद को नीलाम कर दूंगा।

घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिलेगी। हमने कहाँ पता था, हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है। बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई। तेरा प्यार का कितना खूबसूरत एहसास है, दूर होकर भी लगता है कि जैसे तू पल में आस पास है।

कितना अच्छा बयान है कि मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। रहा नहीं जाता तेरे दीदार के बिना, रहा नहीं जाता तेरे दीदार के बिना, जिंदगी अधूरी सी लगती है तेरे प्यार के बिना। तेरे प्यार का असर कुछ ये हुआ है कि हम बदलने लगे, जिंदगी फीकी थी तेरे आने से रंग भरने लगा। दूरियां से ही एहसास होता है, दूरियां से ही एहसास होता है कि नज़दीकियां कितनी खास होती हैं।

बिल्कुल, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आ जाना। मुकेश जी की आवाज़ में हमने आज फिर से श्रवण की है। सुने वालों, मेरा प्यार, प्यार वो नहीं जिसे जीत जिसमें जीत या हार हो, प्यार वो नहीं जिसमें जीत या हार हो, मेरा और उसका कुछ ऐसा रिश्ता है, वो मेरा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार नहीं वो जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए।

फिल्म मेला से निकाला गया सुंदर सा गीत सुनने वालों, आप ही के लिए कि हमने तुझको प्यार किया है कितना, बड़ा सोचो कौन करेगा इतना। उसको बनाने वाले मुझे भी उसका बना दे, सुनो बस इतनी है तुमसे कहना, हमेशा मेरे ही होकर रहना। इनकार करते करते इकरार कर बैठे, हम तो तुमसे एक तरफा प्यार कर बैठे।

एक न एक एक न एक रोज तो होना है, ये कब हो जाए। इश्क का कोई भरोसा नहीं, इश्क का कोई भरोसा नहीं कि ये कब हो जाए। बिना तेरे मेरी हर खुशी अधूरी सी है, बिना तेरे मेरी हर खुशी अधूरी सी है। अब तू ही सोच, तू मेरे लिए कितनी जरूरी है। जी सुनने वालों, आपको हार्दिक से स्वागत है। और यहाँ से हम सुनेंगे श्री लता जी की आवाज़ में।

0: मैं कहती हूँ हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना ज़रूर से गाएगा, अगर ज़ोर से नहीं तो ज़रूर से गुनगुनाएगा, मन में मुस्काएगा। तो सुंदर सा गीत यहाँ से इस कार्यक्रम में आपके लिए चुन चुन कर और लाया गया है, तो यहाँ से हम सब मिलकर और इसी ही तरह सुनते ही चले जाएंगे। हम आपके लिए यहाँ से चुन के रखी हूँ सुनने वालों, तुम जो मिल गए हो, और ये गाए हैं ऋषि नित्य प्रज्ञा। जी हाँ, ऋषि नित्य प्रज्ञा, ये सुंदर सा गीत जो कॉफर किया गीत है वो गाई है, तो हम यहाँ से सुनेंगे उनकी आवाज में।
1: क्रेजी डिवोटी के पागलपन की पराकाष्ठा। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स नीड्स टू बी सेड अबाउट दिस सॉन्ग।

नित्य प्रज्ञानंद से जो हमने यहाँ सुने सुने वालों, और ये गीत जो अपने डिवोशनल चुन में जो हम सबके दर्शाया है, तो सुंदर लगा कि एक गीत भी आप कई रूप से इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और लगा सकते हैं किसी तरह में, जैसे कि प्रभु से जोड़ सकते हो या अपने प्रेमिका या प्रेमी से जोड़ सकते हो या कोई भी।

0: एक और सुंदर सा गीत तो जो उनके मुखारविंद से हम यहाँ से सुनेंगे ऋषि प्रज्ञानंद की आवाज में।
1: ज्ञान चर्चा करता हूँ, ध्यान करता हूँ खुद और सिखाता हूँ लोगों को। सेवा का समय हो तो भरपूर सेवा भी है, लेकिन मेरे जीवन को बड़ा सुंदर बनाने वाला ये जो भक्ति का गाने का एक जो रस गुरु कृपा से जो मिला है, मुझे बड़ा ब्लेस्ड फील होता है कि मैं गा पाता हूं। मेरे गुरु जी का स्मरण करके जब कोई राग पुकारता हूं तो टेक्निकली ट्रेंड गला तो है नहीं, तो सुरों में कई बार ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जो भाव मन से निकलता है वो मुझे लगता है आई फील सो ब्लेस्ड सो दैट आई एम एबल टू गिव सच हैप्पीनेस सच जॉय सच डिवोशन टू पीपल अराउंड मी। इस गाने के जो शब्द हैं, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, आई फील दिस इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ टू।

तो ऐसे सुनने वालों आप सुनते हैं कि गीत जो है तो आप जैसे हमने कहा है कही है कि आप अपने इश्क की भेंटी भी कर सकते हैं अपने प्रेमिका प्रेमी के या जो जो जिस समय पे आपके दिल के पास हो आप उनके लिए गा सकते हो पेश कर सकते हो।

अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से ज़िंदगी में कब मिलती है, मांगने से ज़िंदगी में कब मिलती है, खुद की अपना नया इतिहास बस पैदा करो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, कुछ ऐसा करो कि आप जान पहचान में बने रहो। तो यहाँ से हम इस बार सुनेंगे पंकज उदास जी की आवाज़ में कि निकलो ना बेनकाब

तो पंगज उदास जी ने कहते हैं कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, तो ये आप पर निर्भर है कि आप नकाब या बेनकाब पर चलते हो। आप इस पर भी कपड़े डाल सकते हो या बगैर कपड़े, यानी कि नकाब यानी चेहरा ढक कर, और भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि अपना चरित्र पे भी आप पर्दा करते हो या ना पर्दा करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, ये इस पर आप कैसे आप इसे कॉन्टेस्ट देते हैं, तो ये आप पर निर्भर है। नॉट हेल्थ ओक फॉर मई तुर्लक।

मशहूर फनकार पंकज उदास से हमने सुने, तो ये इनकी इनकी सवालों का जवाब तो मैं तो ये देना चाहती हूँ कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसो मत, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस बार हम सुनेंगे भाई बहन के आवाज़ में नेहा और टोनी कक्कर के।

भाई बहनों, किसी ने क्या खूब कहा, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं।

मित्रों, पानी को कस कर पकड़ोगे तो भी वो हाथ से छूट ही जाएगा। उसे बहने दीजिए, बहने दीजिए, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए मित्रों, तो जो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव और तटस्थ होकर देखते रहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा, खुद ही बना लेगा।

भाई बहनों, नीम को कितना भी शहद में डुबो दीजिए मगर उसका कड़वापन, उसका स्वाद कभी नहीं बदल सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझता है उसके साथ कितना अच्छा करने पर भी वो आपको बुरा ही समझेगा, बुरा ही समझेगा।

दोस्तों, अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर ही समझ आती है।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

जिस प्रकार माता पिता की विरासत को संभालना हमारे कर्तव्य होते हैं, ठीक वैसे ही विरासत के साथ साथ माता पिता की संभालना हमारे संस्कार होते हैं। हम अपने भजनों का श्री गणेश करते हैं।

कहते हैं कि शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको हमेशा सही परिणाम देता है।

कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र।

धन्य धन्य हो भोलेनाथ, बांट दिया तीनों लोक पल भर में, ऐसा दीन दयाल मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद तो ब्रह्मा को दे दिए, बने वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को कर दिया अपने सारी संपत्ति का अधिकारी, अपने पास पात्र नहीं रखा, मगन रहे बागंबर में, ऐसा दीन दयाल मेरे शंभु, भरे खजाना पल भर में। अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया, भागीरथ को दे दी गंगा, सब जग में स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया, आप नशे में मस्त रहो, पियो भांग नित कापर में, ऐसा दीन दयाल मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। लंका तो रावण को दी 20 भुजा 10 शीश दिया, रामचंद्र को धनुष्यवान और हनुमत को जगदीश दिया, मनमोहन को दी मोहनी और मुकुट बख्शीश दिया, मुक्त हुए काशी के वासी, भक्ति में जगदीश दिया, आप नशे में मस्त रहो, पियो भांग नित कापर में, ऐसा दीन दयाल मेरे प्रभु, भरो खजाना पल भर में। वाणी तो नारद को दे दी, हरि भजन को राग दिया, ब्राह्मण को कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया, जिस पर तुम्हारी कृपा भई उसी को अनगन राग दिया, जिसने ध्याया उसी ने पाया, महादेव तेरे वर में, आप नशे में मस्त रहो, पियो भांग नित कापर में, ऐसा दीन दयाल मेरे प्रभु, भरो खजाना पल भर में।

क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है।

तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तू इससे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारी दुखों का कारण है।

परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।

ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो, ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानते हैं वे भय चिंता शोक के सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, इसी से तुम सदा जीवन मुक्त का आनंद का अनुभव करेंगे।

कोई पसंद अपना आकर्षण हो सकता है, पर जीवन भर वही पसंद बने रहना निश्रित ही ये प्रेम कहलाते हैं।

भाई राजकुमार लक्ष्मण की आवाज में हम सब ये सुंदर सा भजन सुने। कहते हैं कि टूटी चीजें हमेशा परेशान करती है, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी का उम्मीद। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है।

सुनो लो, एक कहावत है कि जो बातें हम पी जाते हैं वो बातें हमें खा जाते हैं। हम अगला भजन जो हमारे भाई राजकुमार जी के आवाज में सुनेंगे। नमस्ते।

माँ बाप से बढ़कर मित्र, माँ बाप से बढ़कर हितैषी, माँ बाप से बढ़कर अपना इस संसार में नहीं हो सकता है।

पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है।

परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना।

तो सुनने वालों, क्यों ना एक गीत उस ओर हम बढ़ते हैं। एक गीत संजीर फिल्म से निकाला गया है।

0: एक फिल्म जो बनाया गया 1973 में, जंजीर 1973 में बनाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, आपको पता है कि इससे पहले जब ये फिल्म बननी थी तो सब एक्टरों से पूछा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, राजकुमार, सब ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था जो एक्टर ने गाया,
0: यानी कि हीरो के लिए कुछ नहीं था,
1: हीरो के लिए गाना नहीं था, इसलिए सबने मना कर दिया।
0: तो इसलिए सबने मना कर दिया ये फिल्म को, और तभी अमिताभ बच्चन को और प्राप्त हुआ ये फिल्म करने को।
1: तो अमिताभ बच्चन को फिल्म मिली और फिल्म इतनी हिट बॉक्स ऑफिस में हिट हुई कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन नाम दिया गया।
0: उस समय पे एंग्री यंग मैन कहा गया अमिताभ बच्चन को।
1: हाँ जी।
0: सुनो लो हम एक और सलीम जावट का लिखा हुआ फिल्म जो हम सभी जरूर देखे होंगे। फिल्म का नाम शोले है और उस फिल्म से एक गीत को और आपके लिए रखने के तैयार हूँ।

0: सुनो लो जब तक है जान मैं नाचूंगी फिल्म शोले से निकाला गया और हेमा मालिनी ने खूब एक्ट किया ना बबली जी।
1: हाँ जी, और जब ये फिल्म बनी थी और उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी,
0: क्योंकि ये फिल्म लगातार 5 साल तक वहाँ भी उसको ऊपर में चला ना।
1: हाँ जी,
0: भारत में।

0: लिए आप भी कुछ कहने वाले थे अभी कुछ पुरानी फिल्म के अंतर्गत।
1: हाँ जी जरूर, मैं बताने वाली थी एक दो जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी 70-75 में। एक हुई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी और एक थी सलीम जावेद जी की जोड़ी।
0: सलीम जावेद जी की जोड़ी, क्योंकि ये 2024 में सब दोबारा फिर एक दूसरे को मिलाया गया ना।
1: हाँ जी,
0: और ख़ास करके फिल्मी के अंतर्गत जिन्होंने बहुत सा बड़े बड़े फिल्मों मिल करके लिखे थे।
1: हाँ जी, इनकी फिल्में बहुत हिट हुई। ये फिल्मों में लेखक थे, राइटर थे, स्टोरी लिखते थे और इन्होंने शोले, जंजीर जैसी फिल्में बनाई।
0: ऐसे बड़े बड़े फिल्मों में और अपना यानी कि बनाए। हम फिल्म शोले का एक गीत की ओर बढ़ेंगे, सुनो लो।

फिल्म शोले से निकाला हुआ ये इंस्ट्रूमेंटल, और आप एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: सुनने वालों, एक फिल्म जो 1975 में बनाया गया, बबली जी ये किस दिन रिलीज किया गया था ये फिल्म जो 1975 में, और ये डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म का?
1: 1975 में जो फिल्म बनी उसका नाम था शोले, और 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी।
0: भारत में तो दुनिया पे सबसे ज़्यादा फिल्म जो कहा जाता है कि बॉम्बे में बनाया जाता है, एक साल में कुछ 600 फिल्में कहा जा गया कि बनाया गया, तो ये देखा जाए तो एक दिन में दो फिल्म भी और बन सकते हैं, पर ये बड़े बड़े फिल्म, आ बे सही कितने प्रकार के फिल्म होते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: जो बड़े बड़े फिल्में होते हैं तो उसके लिए डेट निकाला जाता है, और हर साल ऐसे 15 अगस्त को भी बड़े बड़े फिल्मों जो और प्रीमियर में जाते हैं। तो 1975 में ये एक बड़ा फिल्म था, रमेश सिप्पी जी ने बनाए थे ना।
1: हाँ जी।
0: कलाकार हूँ उनमें?
1: कलाकार थे संजीव कुमार जी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, और एक नया विलन आया अमजद खान।
0: उस समय के लिए एक नया विलन आया था अमजद खान।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी जी, उनको लोगों ने बोला कि आप नया विलन क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये फिल्म कहीं पिट ना जाए, आपको एक अच्छा मजबूत और विलन लेना चाहिए।
0: तो उस समय के बात है कि जब अजीत आदि जो विलन,
1: अजीत, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ,
0: ये लोग जो विलन का रोल करने लगे थे, पर अमजद खान के लिए ये एक नया रोल था जो जिसमें उसका नाम भी रखा गया था गब्बर सिंह ना।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के लेखक हैं, अरे सलीम जावेद जी, दोनों जोड़ी हैं जिनकी, वो कहते हैं कि हमने जब उनके गांव में, उन्होंने एक कहानी सुन रखी थी गब्बर सिंह, और सच्ची कहानी है, तो इसी के ऊपर उन्होंने गब्बर सिंह, अरे सुझाव दिया डायरेक्टर जी को कि विलन का नाम गब्बर सिंह ही रखना चाहिए।

0: और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर।
1: उस समय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और अमिताभ बच्चन जी उस समय सुपरस्टार बन गया था ना इसी फिल्म से, यानी कि सुपरस्टार का और जो जगह प्राप्त किए थे ना।
0: हाँ जी, लेकिन इनसे पहले उनकी फिल्म आई थी जंजीर
1: में, जिससे हाँ पहचाना गया,
0: एंग्री यंग मैन
1: एंग्री यंग मैन के नाम से पहचाना गया था। तो ये फिल्म शोले का और एक गीत और मैं कोशिश करूंगा रखने के,

0: क्या आपको पता है जब शोले फिल्म के पोस्टर लगे तो उसमें जो राइटर थे सलीम जावेद जी, उनका कहीं नाम नहीं था।
1: उनका कहीं नाम नहीं था तो क्या पोस्टर पे नाम लगाया जाता था उस समय पे?
0: हाँ जी, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, लेखक सबके नाम होते थे।
1: सलीम जावेद का नाम नहीं रखा गया था वो पोस्टर पे, और तो हुआ क्या?
0: तो फिर उन्होंने दोबारा से पोस्टर बनवाए और उस पर अपना नाम लिखवाया।
1: यानी कि पोस्टर पे अपना नाम लिखवाए ये सलीम जावेद का, रिटन बाई सलीम जावेद। ये सुंदर सा फिल्म जो 1975 में जाकर के रिलीज हुआ, और कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने ये बड़ा फिल्म बनाने का फैसला लिया था, पर उनका बजट कहा गया था 1 करोड़ था ना?
0: हाँ जी, उस समय में 1 करोड़।
1: उस समय के लिए 1 करोड़ बड़ा बड़का पैसा होता था।
0: बहुत ज़्यादा, अब भी ज़्यादा है।
1: और पर बनते बनते ये फिल्म बन गया था 3 करोड़।
0: हाँ जी, 3 तक पहुँच गई।
1: और 3 करोड़ हो गया था और ये फिल्म यानी कि बजट से बाहर को और खर्चा हुआ।
0: सही बात।
1: और शुरू शुरू में तो जब प्रीमियर पे आया तो डर गए थे कि ये फिल्म चलेगा नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर सब कहते हैं अच्छा 1 हफ्ते तक देख लो कि क्या रिजल्ट निकलता है।
1: तो हफ्ता बाद जब रिजल्ट अभी पूरा नहीं हुआ था, फिल्म बस फिल्म के डायलॉग के माध्यम से फिल्म खूब चल पड़ा ना।
0: हाँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें कि लोगों को कितनी, अरे घंटे लाइनों में लगना पड़ता था टिकट लेने के लिए।
1: कितने घंटे लाइनों में लगता था और टिकट लेने के लिए।
0: हाँ जी।

0: बड़ा बोझ है आप पर।
1: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
0: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
0: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
0: हाँ मौसी, अब ये कंबक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: है तो क्या जुआरी है?
0: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
0: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है, अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
0: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
0: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ?
1: अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
0: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
0: अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूं, कोई सौतेली मां नहीं।
0: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।

0: सलीम जावद के लिखा हुआ डायलॉग मौसी का भी कितना सुंदर सा डायलॉग है ना बबली।
1: हाँ जी, मौसी जी का डायलॉग, और वो भी डायलॉग जो धर्मेंद्र टैंकी के ऊपर चढ़ के मौसी को गाली देते हैं।
0: ऐसे उसमें मेरे ख्याल से उस समय पे भी डायलॉग, सिर्फ डायलॉग से एक एलपी भी बनाया गया था ना, वो जो भारत में लोग खरीद सकते थे, वो सूरीनाम में नहीं आया था मेरे ख्याल से। तो लोग लाइन में खड़े हो करके, और सभी डायलॉग जो बनाया गया, जो लिखा गया था और जो आवाज़ में रखा गया था, लोग बहुत पसंद करते थे उस समय पे, और आज भी वो अभी तक लोग भी पसंद करते हैं ना।
1: हाँ, क्योंकि जब मर्जी हो तो डायलॉग सुन सकते हैं।
0: हम एक गीत और, यानी कि सलीम जावद के फिल्म, उसी प्रकार से उन्होंने फिल्म शान मेरे ख्याल से और बनाए लिखे थे।
1: हाँ जी, शान भी थोड़ी शोले की तरह थी, लेकिन वो लोगों ने इतनी पसंद नहीं की जितना शोले पसंद की।
0: शान उतना नहीं चला था मेरे ख्याल से
1: ना, शान से ज़्यादा दीवार चली थी। दीवार भी 1975 में आई।
0: दीवार फिल्म, वो भी सलीम जावद के लिखा हुआ, 1975 में वो रिलीज हुई।
1: हाँ जी, और वो ये एक्शन और क्राइम ड्रामा फिल्म थी।
0: एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म। दीवार फिल्म में भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों भी थे ना।
1: गीत भी थे, और ये दो भाइयों की कहानी थे।
0: दो भाइयों की कहानी।
1: हाँ जी, और उसके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए। और एक भाई इंस्पेक्टर होता है, और एक भाई, अरे बाद में पहले छोटे मोटे क्राइम करता है, फिर बाद में बड़ा चोर कह लो या कुछ ऐसे बन जाता है। यानी कि एक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, इन सब ने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, निरूपा राय।
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

सुनने वालों, ये फिल्म दीवार से निकाला गया ये सुंदर सा गीत उसी समय के बात है जब सलीम जावद का जोड़ी थे तो बनाया गया फिल्म शान, और फिल्म शान से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत मैं प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक जो मेरे हिस्से के कार्यक्रम हमने और आपके लिए प्रस्तुत किया, हमारे साथ दिए बबली आसरा जी भी और मैं हूँ आपका सेवक संजय, और यही आशा रखता हूँ कि आपका कार्यक्रम भी कुछ न कुछ रूप में अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे, नमस्कार।

हाँ सुनने वालों, दिल के सहारा आजा प्यार करे, और ज़रूर से प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार से आप है, प्यार से हम है, प्यार से ये सब सारा जहान है। आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आए खुशबू।

चले थे साथ मिलकर और चलेंगे साथ मिलकर, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी, ज़रूर से हसीना मान जाएगी।

जितेंद्र कपूर जी के मीठी आवाज में नीले गगन के चले फिल्म हमारा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत सुनने वालों। कहते कि आज सोचा

कि आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं, आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचा सोचूं, अभी तक इसी सोच में हूँ कि क्या सोचूं। एक बार फिर यहाँ से हम सुनेंगे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे हम, देखे तो किस फिल्म का है ये सुंदर सा गीत, जब जब फूल खिले। हाँ, जब जब फूल खिले फिल्म से निकाला गया है, और यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं लता जी की आवाज़ में। सुनेंगे सुनने वालों आज इस खूबसूरत तारीख जो है यहाँ पर हम मिलकर और सुनते हैं चलते हैं। मोहब्बत खुद बतलाती है, मोहब्बत खुद बतलाती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसके आँखों में रहना है या किसके दिल में बसना है।

झिम बरसता सावन होगा, लता जी की आवाज में यहां से हमने मिलकर और श्रवण किए। जरूरत से ज्यादा सोचना, जी हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना भी खुशियां छीन लेता है।

So romantis, so romantis. दिल छू जाते हैं ये लफ्ज़े रफ़ी जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुने। सुने वालों, फिल्म का नाम शबनम।

राज राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, सामने आते ही नज़र झुकाते हैं वो। इस बार हम सुनेंगे अम्मू केस जी की आवाज़ में।

हाँ जी, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। फिल्म का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी आपसे बतला दे, आपने सुने, हमने सुने लता और मुकेश जी की आवाज़ में कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

हाँ, कांची रे कांची रे, कांचा रे कांचा रे, ये नाम था ये दोनों का फिल्म में। अब फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा, किशोर दा और लता जी की आवाज़ में। यहाँ से हमने और सुने दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होता है, दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होती, जिससे दोस्ती होती है बस वही स्पेशल हो जाता है। दोस्त के दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता, दोस्त के दोस्ती में कभी रूल नहीं होता है, और ये सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं होता।

सलम आई मिलन की बेला से ये सुंदर सा गीत यहाँ लता और रफी जी की आवाज में हमने सुने हैं। दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, चांद सितारों से हो तो जन्नत कहते हैं, हसीनों से हो तो मोहब्बत कहते हैं, और आप से हो तो उसे किस्मत कहते हैं।

अजनबी हूँ रफ़ी जी की आवाज़ में। हमने सुने सुने वालों फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। दोस्ती का रिश्ता दो अनजानों को जोड़ देता है। हर कदम पर जिंदगी को नया मोड़ देता है। तुम सदा मुस्कुराते रहना ये तमन्ना है हमारी।

ते मेरे बीच आपके और मेरे बीच कुछ आखिरी नहीं है सिवाय आखिरी सांस के। तो आपको हम लेकर चलते हैं अदनान सामी की आवाज में।

सारे दीवाने ओ दीवाने, गोल्डन मेलोडीज ऑफ आनंद ने गोल्डन मेलोडीज हम देखे तो अदनान साहनी जी की, जी हाँ, और साथ दे रहे थे आशा भोसले जी। वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो, मेरी जिंदगी का आधार और मेरी सांसों का तार है वो। कितने भी लड़ ले झगड़ ले पर मेरे लिए, जी हाँ, पर मेरे लिए बस प्यार है वो। यहाँ हम सुनेंगे अल्ताफ राजा की आवाज में।

इंसाफ राजा से जब से दूर लगे रहने हो तुम। कितने अच्छे अच्छे लफ्ज़े, कितनी दर्द भरे बयान इसमें हमको सुनाई अल्ताफ राजा ने।

और मैं सोचती हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो ये कहना चाहती हूँ कि het leven is toch veel te kort om met spijt wakker te worden. Het leven is toch veel te kort om met spijt wakker te worden. Denk aan de leuke dingen en vergeet de vervelende dingen. भी जरूर कहना चाहती हूँ सुनने वालों की द ड्यूरस्ट फ्लोइस्टॉफ, जी हाँ द ड्यूरस्ट फ्लोइस्टॉफ देयर वेरल इस अंतरान, आपने ठीक सुने कि सबसे महंगा सबसे महंगा पानी जो संसार में है वो आपके आंसू है, हम सबका आंसू है. द ड्यूरस्ट फ्लोइस्ट ऑफ देयर वेरल इस अंतरान है बस्ता 1% वाटर एंड 99% गेवोलेंस. Denk daarom twee keer na voor

मन से हमने सुने कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है और हसीन है। अच्छा सुंदर सा गीत इस दिवस में हमने यहाँ से सुने हैं। को बहुत सारे प्यार मिले। Het leven is zo voorbij. Het leven kan zo voorbij gaan, voorbij zijn. Geniet van je leven, zeg ik. Geniet van je leven zoals jij het wilt. En niet zoals een ander dat wil. Het zijn de kleine dingen in het leven die je blijdschap en liefde geven. ऐसे जियो, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों को पसंद तो पल भर में बदल जाती है।

दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। सुनाए हमको आनंद राज आनंद, जी हाँ आनंद राज आनंद से हमने सुने ये सुंदर सा गीत और निकाला गया फिल्म मस्ती से। Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, ik parier. Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn. Om met elkaar overweg te kunnen, heb je niet dezelfde ideeën nodig, maar hetzelfde respect. नहीं कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, बस दूर होके भी दूरी ना लगे इतना सा रिश्ता बनाए रखना। ए इश्क मैंने सुना था कि तू अंधा है, फिर रास्ता मेरे दिल का बताया किसने। इश्क करते हो और बर्बादी से डरते हो, बड़े नादान हो तुम साहेब।

सोनू निगम की आवाज़ में हमने सुने कि सब कुछ भुला दिया। फिल्म का नाम हम देखे तो हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, उसी फिल्म से ये सुंदर सा गीत हमने सुने सोनू निगम की आवाज़।

कैद हो जाया करते हैं, कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कसम से, जी हाँ कसम से, उन्हें याद करके हम मन ही मन कितना मुस्कुराया करते हैं। दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, वो लम्हे जीने की वजह बन, वो लम्हे जीने की वजह बन जाया करते हैं। कहने के तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, कहने के तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, दिल में जो रहे वो अमानत बन जाया करते हैं।

0: कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तू मां जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूं पल तो पल के लिए, आ निकला हूं पल तो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके

0: अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। सुने वालों, है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द टाइटल आप सभी के वास्ते।
1: दूध की कटोरी

0: I will not give you that मौको. अभी तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको.
1: एक

0: यार ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार। हाँ। दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
2: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?

द टाइटल भी आप सुन रहे थे, है जवानी तो इश्क होना है। इसी फिल्म से कुछ और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चुनरी चुनरी।

ये जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश की है आ जाना छुले मेरी चुनरी सनम। पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दी रानी।

पति पत्नी और वो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं रूप दी रानी। भूत बंगला है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे ओ सुंदरी।

फ्रॉम द मूवी भूत बंगला से हमने पेश किए हैं ओ सुंदरी। स्टेबिन बेन और जुनिता गांधी की आवाज़ में आप सुनेंगे तेरा हो जाऊँ। फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है।

है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश किया है। तेरा हो जाऊं आपको सुनाने वाले थे जुनीता गांधी और स्टेविन। चलिए इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी वेलकम टू द जंगल, ऊंचा लंबा कद फॉरएवर।

अभी आप सुन रहे थे ऊंचा लंबा गुड फॉरएवर। है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं, व्याह करवा दो जी।

0: फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं व्याकर वादो जी। प्यार करके पछताए फ्रॉम द मूवी पति पत्नी, और वो से आप सुनेंगे।
1: चंचल कुमारी बनारस से यहाँ आई है।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो से प्यार करके पछताए। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बिजुरिया।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बिजुरिया हमने पेश की है आप सभी के वास्ते। संजू राठौर और ईशा मौविया की आवाज़ में आप सुनेंगे शेके।
1: किस्मत में गुलाम लिखे हुए रानी गुलाम ने नहीं राजा ने मिले करे।

0: बोला माझा किंग, ओ माझे किंग.
1: मी
0: घरी नाही जायचं का? मी तुझी गर्ल, जाने जी गर्ल, मी चम्मच छलो, तू माझा किंग किंग किंग किंग.
2: अभी आप सुन रहे थे शेकी, संजू राठौर और मलविया की आवाज़ में हमने पेश किए हैं. परम सुंदरी है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हम पेश करते हैं डेंजर.
3: अरे डांस करना है ना.
4: अरे तेरे भाई है ना यहाँ पे. रुक
5: नल्लम डेंजर आनलो चुप अपने रतिले सारी यंगल नल्लम डेंजर.

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी से हमने पेश किए हैं डेंजर। गुलाबी साड़ी आपको सुनाने वाले हैं संजू राठौर।

अभी आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी संजोत राठौड़ की आवाज़ में। मेरे रहनुमा आप सुनेंगे

अभी आप सुन रहे थे मेरे रहनुमा। हम बढ़ चलते हैं ये सॉन्ग की ओर, 2026 का जादू।

शानना नना भी आप सुन रहे थे है ये दोस्ती यार जिंदगी। ये गीत हमने पेश किए हैं फाहून क्रू के ओर से गंगा जी के वास्ते, जबकि गंगा जी का कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ आशीर्वाद खुशियाँ पेश किया गया फाहून क्रू के ओर से। कल हो ना हो द टाइटल हम पेश करते हैं और ख़ास करके ये गीत पेश किया जाता है फाहून क्रू के ओर से भाई गंगा जी के वास्ते, जिनकर कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना आशीर्वाद पेश की जा रही है।

0: ये सुंदर सा गीत हमने पेश किया है भाई गंगा जी के वास्ते, जबकि भाई गंगा जी का कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है। तो फाहौन क्रू ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश करते हैं आपके वास्ते। भाई गंगा जी, पार्टी कब है, आज या कल पता तो नहीं, लेकिन वेयर्स द पार्टी टुनाइट। ये सुंदर यानी ये सुंदर सा सॉन्ग हम पेश करते हैं फाहौन क्रू के ओर से भाई गंगा जी के वास्ते, जिनकर कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है। तो ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश किया जाता है।
1: Not your night, but not your night.

Where's the party tonight हमने पेश की है भाई गंगा जी के वास्ते, जबकि भाई गंगा जी का सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामनाएँ और आशीर्वाद पेश की जा रही है। जबकि भाई गंगा जी का कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो फाहौन क्रू मिल करके आप सभी को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद और खुशियाँ पेश करते हैं ये सुंदर सा सॉन्ग के साथ।

ये सुंदर सा गीत हमने पेश की है भाई गंगा जी के वास्ते, जिनकर कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना आशीर्वाद पेश की जा रही है फाहौन क्रू के ओर से। भाई गंगा जी जब क्या यानी कल तेरा जन्मदिन जो है, तो क्यों ना ये हो जाए, ये गीत हम पेश करते हैं फाहौन क्रू के ओर से आपके वास्ते।

इट्स द टाइम टू डिस्को, और ये गीत हमने पेश किए हैं भाई गंगा जी के वास्ते, जबकि भाई गंगा जी का कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद और खुशियाँ पेश की जा रही है फाहुन क्रू के ओर से। जबकि भाई गंगा जी का कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो जीवन साथी कारला जी और सभी बच्चे, सभी नाती और पोता मिल करके भाई गंगा जी को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना पेश करते हैं ये सुंदर संगीत के साथ।

ये सुंदर सा गीत हमने पेश किए हैं भाई गंगा जी के वास्ते, जबकि भाई गंगा जी का आने वाले सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो जीवन साथी कारला जी, सभी बच्चे, सभी नाती और पोता मिल करके ढेर सारे बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद पेश कर रहे थे। भाई गंगा जी का जब कल सोमवार 15 तारीख के जून को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश की जा रही है जीवन साथी कारला के तरफ से, सभी बच्चे और सभी नाती पोता की ओर से ये सुंदर सा गीत के साथ।

ये गीत पेश किया गया भाई गंगा जी के वास्ते, जबकि ये भाई गंगा जी का कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो जीवन साथी कार्ला के तरफ से अपना जीवन साथी, सभी बच्चे अपने पापा और सभी नाती और पोता अपने आजा और नाना को ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना पेश करते हैं। भाई गंगा जी, हम आपको अभी से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पेश करते हैं। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, यो यानी ये गीत हम पेश करते हैं जीवन साथी कार्ला के तरफ से अपना जीवन साथी गंगा जी के वास्ते, और सभी बच्चे, सभी नाती और पोता अपने पापा और आजा और नाना को ढेर सारे बधाइयाँ खुशियाँ पेश कर रहे हैं।

ज़रूर जन्मदिन पर दे रहा हूँ तुमको बधाई। और ये गीत हमने पेश किए हैं भाई गंगा जी के वास्ते, जबकि कल सोमवार 15 तारीख जून को भाई गंगा जी का जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश किया गया जीवन साथी कारला के तरफ से और सभी बच्चे, सभी नाती और पोता के तरफ से। भाई गंगा जी, जबकि कल आपका जन्मदिन जो है, तो प्रीतमा कारला जी के तरफ से ये सुंदर सा गीत पेश किया जाता है बहुत बहुत प्यार के साथ।

यीशु ने संगीत पेश किया गया भाई गंगा जी के वास्ते, जिनकर कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है। तो प्रीतमा कारला अपने प्रीतम को ढेर सारी बधाइयां शुभकामना पेश किए हैं। भाई गंगा जी जिनकर कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो फहोन क्रू के ओर से भाई गंगा जी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामना पेश की जा रही है।

हैप्पी बर्थडे टू भाई गंगा जी, जिनकर कल सोमवार 15 तारीख जून को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद, खुशियाँ पेश किया गया फहन क्रू के ओर से।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से अपने हिस्से के प्रोग्राम हमने पेश किए हैं, मैं आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल नेक्स्ट टाइम।

तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम से श्रीकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार का पैगाम। दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी हम अपना सूरीनाम या देश विदेश के समाचार लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों क्या क्या हुआ है अपना देश सूरीनाम में, विदेश में क्या क्या हुआ है, उसके बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। और दोस्तों आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज हम लाइव है दोस्तों, और जितने लोग हमें देख रहे हैं आपको हम प्यार यहां से प्यार पटाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से दोस्तों। तो और चला जाए तुरंत हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में। भैया क्या हुआ है, भैया एक वो नीदरलैंडर है नीखन देर तक यारखा एक आदमी है। तो ये भैया के सिपाही बहुत दिन से खोजे भैया इंटरपोल पे रहा कि कहाँ रहा, और ये आदमी दौक रहा लुकान रहा। तो ये आदमी भैया चल गए और गैल है यानी कि सूरीनाम से कोलंबिया में भाई। और तू जाने कोलंबिया में क्या होता है दोस्तों, कोलंबिया में जब गए ले भैया तो वहाँ ड्रग्स के कारोबार में और एक के सबन पकड़ ले इसे ड्रग्स ट्रांसपोर्टन के बारे में। और बोले द एरस्टासी फोसात दख छेतारी जुनाई के, और बोले ना द मान अलांगर तेज इंटरनेशनल के सीनियर से सबन के खोजत रहा। अब एंडलेक एक पाई गए भैया सिपाही कोलंबिया के, और ये एक पाई गए है तो तुरंत बंद कर दे इसे। और हिया नीदरलैंड बोले हमें तू अनमिया के लीवर कर वो के हम लोग खोजिला नीदरलैंड विल द मान लातन आउट लीवरन सो दैट है दार फॉर द रेक्टर कान फर्शकाइनन द फर्दर अफहांडरिंग फॉर द जाक लेक न्यू बेड बत्रोकन जिसील ऑथोरिटेटन के पास है। दोस्तों और चलते हैं हम जोगी महेंद्र जोगी के ओर हम जाए भैया, ये वही महेंद्र जोगी है सर मक्का वाला फेहा पी के देना ले थे महेंद्र जोगी। और बोले वो क्यूनन खीर आर बेदर फिंदन ओम तवेरकन, बोले हम लोग के यहाँ सूरीनाम में कम करते हुए नाम मिले हैं काम करे खातीन। और बोले है कम करता इंदर दाद में से सूरीनाम में जइयो तो कम करता नाम मिले है भाई। तू चिराग लेके खोजियो, पहले मैया लोन बोला था फरामो लेके खोजियो तब वो कम करता सूरीनाम देश में ना मिले है। बाकी यही के सुनिए बोले बारा पीना करेला, बोले बारा पीना करी बोले स्टेना सागी मिनो गिमुआ बीरीनो। अब बोले आ हम आप रसिया तरी से हारक कर दे, तो बोली कितना भरिए। तो ये बात है दोस्तों, वो क्यों नहीं आर्मेनियस फिंडर ओम तो वर्कन, बोले फेट इस दर बफोल्क नीच लेफ्ट कंपन हीव में द प्रॉब्लमेटिक फन वाटर ओफलास एंड बिसोंडर स्लेक्ट वीक एंड टर्वेल वो vergeten dat we geen arbeiders kunnen vinden om te werken. Bedrijven zitten verlegen terwijl we vergeten dat de banken hoge rentes en hoge rentelasten vragen. Het zou haast onmogelijk zijn om de vervangingsinvesteringen te plegen in het land, mensen. Alhoewel er regelgeving bestaat binnen het CARICOM-verband kan Suriname haar vleugels niet uitspreiden naar de overige CARICOM-landen met haar diensten te producteren, mensen. तो सूरीनाम के बात है जो कि भैया बोले कम करता ना मिले भैया वहाँ इंद्रदान फिर मान जाइयो खोजे टेमड़े मान जाइयो खोजे तो कम करता इंद्रदान ना मिले भाई। तो लोन जानो है पुलिसी ब्यूरो में भाई, पुलिसी ब्यूरो है इस फ्लाइट में, और वहाँ पर भैया बहुत चोरी भैल हैगा भैया, दूध के बाल्टी में सब धरे रहा, हाँ बाल्टी में टैंक में धल रहा, अकुएक चोरी हुई है
बारे में जोगी बोले हैं बोले हैगा कब का बोले हम लोग के हनीस मनोरथ बोले नो टच मी ते कहते बोले उसको तो टच करे तो घर में से चोरी हुई है। तो हेमन बुद्धो आपको हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, साथ साथ धर्मेंद्र श्री भी आ गए हैं। आप सबको यहाँ से बहुत प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और कहते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेते ही रहो। तो यहाँ बताए गए अब वो चीज कहाँ मिली भैया क्वेक के बारे में। इंस्पेक्टर हमें यहाँ इंस्पेक्टर पिनास गए लाउंडर सुख करे सगरो गए ताके इंस्पेक्टर कि कैसे चीजों भैल और चीजों अख्तर द ट्रेन फॉर पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से चोरी भैल है। और दोस्तों जैसे शायद आप लोग को याद होगा कि बहुत चीज खैर फ्लाइट ब्यूरो में से चोरी हुए है ना। ये पहला दाएं भैया रखेरे और प्रखेरे जब सुनिए ये कुछ गैल है तो पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से गैल है। और ये बात है द पुलिस फ्लाइट नीड एट क्वार्टर टर्मिनल ऑन हाउ द सिल प्लांट फिनल आई हैड ओपन द ऑन द सुक मुड ब्लैक एंड द पुलिस अमतनार ऑल ना निर्बत्रोकस एंड कमिट बेरे फॉर ड्वेनिंग इन फॉर द गफालक स्टफ में से। लेकिन बात ये है कि कितना बार सब बोले भैया हम लोग के हनीस मनोरथ के और सबसे बड़का आर्टिफिशियर है हाइतियान और वो हैगा तुलन जाने शाया। तो शाया लगे जाओ और पूछो कि कैसे चीजुआ है। तो बातचीत यही है भैया लोन ती कोई कोई अपने काम पे भी बैठ के हमारा प्रोग्राम को सुन ले भैया हेमंत बुद्धू। तो आपको भी बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देते हैं। तो हेमंत अब देखो क्या हुआ है, बात ये हुआ है कि अब कैसे क्विकवा मिलेगा। सब कोई बोले कैमरा लगाओ भैया हिया आदमी अपन ट्रेन में कैमरा लगावे है, हिया चारों बगल लगावे सूरीनाम में भी कैमरा भैया। तो पुलिस ब्यूरो इतना बड़ा एक जगह है हुआ पे तो फेल है इस कैमरा ना है देसवा हमार कहां जा है भैया फेल है कैमरा चाहेंगे पुलिस ब्यूरो में लगावे के सेल्फ जहलीवन लगे चाहे लगावे के कि जो भगी तो देखिए कौन कवाड़ी तुर के ऊ भगल है। तो यहां बोले ब फेल है इस की तकोर एड फॉर लूप के ब फ्राइजेंस ब्लैक द ब फेल के फॉर द पुलिस ट्रेन एरर्स तक तकोर कोमिंग फॉर टोन द ऑन द रस्टिंगन rondom het terrein is op verschillende plaatsen beschadigd en er ontbreekt een toegangspoort poort door het heen naar bhaiya te jarur chori hoega hai na batia bhaiya buddhu to poort naar bhaiya chor loon ke freye toegang hai aap log ko baat aur bataye bhaiya hemant buddhu aur jitne log ko hai suriname jagah jameen hai dharmen je ke tulon jano hai fiya pee ke rakhe रे 5 बरिस बैठल हां। तो उसे बोले रहा कि अपन जगह जोंतुल के हैगा हीर परसील खंतन के

फेस युग के माध्यम से आज हम लाइव है दोस्तों, और जितने लोग हमें देख रहे हैं आपको हम प्यार यहां से प्यार पटाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से दोस्तों। तो और चला जाए तुरंत हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में। भैया क्या हुआ है भैया, एगो नीदरलैंडर है नीखन देर तक यार रखा एक आदमी है। तो ये भैया के सिपाही बहुत दिन से खोजे भैया इंटरपोल पे रहा कि कहाँ रहा, और ये आदमी दौक रहा भाई, दौक रहा लुकान रहा। तो ये आदमी भैया चल गए और गईल है यानी कि सूरीनाम से कोलंबिया में भाई। और तो जाने कोलंबिया में क्या होता है दोस्तों, कोलंबिया में जो गईल भैया तो वहाँ ड्रग्स के कारोबार में और एक के सबन पकड़ ली से ड्रग्स ट्रांसपोर्टन के बारे में। और बोले द अरेस्टासी फोन 7-6 जुलाई के, और बोले ना दा द मान अ लंगर टाइट इंटरनेशनल ख सीनियर स्टोंट मेन से सबन के खोजत रहा। अब एंडलेक एक पाई गए भैया सिपाही कोलंबिया के, और जे एक पाई गए है तो तुरंत बंद कर दे इसे। और हिया नीदरलैंड बोले हमें तू अदमिया के लीफर कर वो के हम लोग खोजिला नीदरलैंड विल द मान लातन आउट लीफरन सो दैट है दार फॉर द रेक्टर कान वर्शाइनन द फर्दर अफहंडरिंग फॉर द जाक लिख न्यू बेड बत्रोकन जिसील ऑथोरिटेटन के पास है दोस्तों। और चलते हैं हम जोगी महेंद्र जोगी के ओर हम जाएला भैया। ये वही महेंद्र जोगी है सरमक्का वाला फे यहां पे के देना ले थे महेंद्र जोगी। और बोले वो क्यूनन खीर आर बेदर्स फिंदन ओम द वर्कन, बोले हम लोग के यहां सूरीनाम में कम करते हुए नाम मिले है काम करे खातिन। और बोले है कम करता इंदर दाद में से जो सूरीनाम में जइयो तो कम करता नाम मिले है भाई। तू चिराग लेके चेक खोजियो, पहले मैया लोन बोले था फरामो लेके खोजियो तब वो कम करता सूरीनाम देश में ना मिले है। बाकी यही के सुनिए बोले बारा पीना करेला, बोले बारा पीना करे बोले स्टेना सागी मिलो गिमुआ बीरीनो।

rentelasten vragen het zo haast onmogelijk zijn om de vervangingsinvesteringen te plegen in het land, mensen. Alhoewel er regelgeving bestaat binnen het CARICOM-verband, kan Suriname haar vleugels niet uitspreiden naar de overige CARICOM-landen met haar diensten te producteren, mensen. तो श्रीनाम के बात है जो कि भैया बोले कम करता ना मिले भैया वहां इंद्रदान फिर मान जाइयो खोजे टेमड़े मान जाइयो खोजे तो कम करता इंद्रदान ना मिले भाई चलो जानो है पॉलिसी ब्यूरो में भाई पॉलिसी ब्यूरो है इस फ्लाइट में और वहां पर भैया बहुत चोरी भइल हैगा भैया दूध के बाल्टी में सब धरे रहा हां बाल्टी में टैंक में धले रहा अक्वेक चोरी हुई है बारे में जोगी बोले है कब का बोले हम लोग के हनीश मनोरथ बोले बोले नो टच मी ते ही खत बोले उसको तो के टच करे तो घर में से चोरी हुई है तो हेमन बुद्धु आपको हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं साथ साथ धर्मेंद्र श्री भी आ गए हैं आप सबको यहां से बहुत प्यार देते हैं दुलार देते हैं और कहते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेते ही रह लो तो यहां बताए गए अब वो चीज कहां मिली भैया क्वेक के बारे में इंस्पेक्टर हमें यहां इंस्पेक्टर पिनास गए लाउंडर सुख करे सगरो गल ताके इंस्पेक्टर लेन कि कैसे चीज हुआ भैल और चीज हुआ अख्तर द ट्रेन फॉर पॉलिसी ब्यूरो खैर फ्लाइट में से चोरी भैल है और दोस्तों जैसे शायद आप लोग को याद होगा कि बहुत चीज खैर फ्लाइट ब्यूरो में से चोरी हुए है ना ये पहला दाएं भैया रखेरे और प्रखेरे जब सुनिए ये कुछ गैल है तो पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से गैल है और ये बात है द पुलिस फ्लाइट नीड एट क्वार्टर टर्मिनल ऑन हाउ द सिल प्लांट फिनन आई थेट लोपन द अंडर सुक मुड ब्लैक एंड द पुलिस अमतनार ऑल ना नीड बत्रोक सेन खमीर बे दे फॉर ड्वेनिंग इन फॉर द गफालक स्टफ मींस लेकिन बात ये है कि कितना बार सब बोले भैया हम लोग के हनीश मनोरथ के और सबसे बड़का आर्टिफिशियर है हाइतियान और वो हैगा तुलन जाने शाया तो शाया लगे जाओ और पूछो कि कैसे चीज हुआ है तो बातचीत यही है बातचीत यही है भैया लोन कोई कोई अपने काम पे भी बैठ के हमारा प्रोग्राम को सुन ले भैया हेमंत बुद्धू तो आपको भी बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देते हैं तो हेमंत अब देखो क्या हुआ है बात ये हुआ है कि अब कैसे क्विक वहां मिलेगा सब कोई बोले कैमरा लगाओ भैया हिया आदमी अपन ट्रेन में कैमरा लगावे है हिया चारों बगल लगावे सुरिनाम में भी कैमरा भैया तो पुलिस ब्यूरो इतना बड़ा एक जगह है हुआ पे तो फेल है इस कैमरा ना है देसुआ हमार कहां जा है भैया देसुआ हमार कहां जा है फेल है कैमरा चाहेंगे पुलिस ब्यूरो में लगावे के सेल्फ जहलीवन लगे चाहे लगावे के कि जो भगी तो देखिए कौन कवाड़ी तुर के ऊ भगल है तो यहां बोले ब फेल है इस की तकोर एड फॉर लूप के ब फ्राइजेंस ब्लैक दैट ब फेल के फॉर द पुलिस ट्रेन ernstig tekortkoming vertoont. De ontrastingen rondom het terrein is op verschillende plaatsen beschadigd en er ontbreekt een toegangspoort. Poort door het hyena, bhaiya, te jarur chori huiga. Hyena, bhaiya, bhaiya, buddhu. To poort na, bhaiya, chor loon ke vrije toegang hai. Aap log ko baat aur bataye, bhaiya, Hemant buddhu. Aur jitne log ko hai, Suriname jagah jameen hai. जगह जमीन है धर्मेन जे के तुलन जानो है फिर या पी के रखेरे पांच बरिस बैठल हाँ तो उसे बोले रहा कि अपन जगह जो तुल के हैगा हिर परसील ख्रंतन के बोले तुल के मख है जाए के एक दम करवावे के उकर बारे में खरों कॉन्फ्रेंसिंग एगो कांतोरु खुलल हां अपन बसके के ले जइयो तो खरों इंस्पेक्शन पठाई मिनिस्टर लगे तो मिनिस्टर तो के बोली जा इतना पैसा भर वन इतना के फिर कांत में इधर तो जगह है उकर बाद में जइयो नोटारस में खूब ढेर के पैसा भइयो उकर बाद में तोर कागज जाएगा खलेस में तो खलेस वहां पे जाए के सब में स्टैंपल मारी तो उकर बाद में तोर जगह सब एकन दम हो जाएगा तो इरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं तब तोर जगह हुई तो पांच बरिस में कानी कयन हजार आदमी खरन कॉन्फ्रेंसिस अपन जगह सब एकन दम करी से

आईले भैया मिनिस्टर फन के बेबे को मलाई आईले भैया पेल के उबा अने स्टेनली सूरो पा वीरो फन ग्रोन बलेट एंड बोस बहिर के बेबे के तो ई का बोले है गा हम बोले जितना ग्रोन कॉन्फ्रेंसी के जैसे जैसे आईल है बोथर्स के रखेरिंग एनडीपी के रखेरिंग जैसे आईल है हेलमा ग्रोन कॉन्फ्रेंसी के चीज बन कर दे से कि अब कोई के नमा के अपन जगह एक दम करे बाकी कितना आदमी अब पैसा भर चुका ला सेंट्रल बैंक में ओकर साख चले हैं बाकी जैसे ही रख रहे हो आयले बंद कर दी न्यू फ्राक रिमेन से ही कि जनता जो आयले जनता खात आयल है कि अपन खात आयले जनता के खात तो आयले बाटे बस सब बंद कर दी से गा और यह का स्टेनली सूरो पावीरो फन ख्रोन बलेट एंड बोस बहिर के खई भी के तो बातचीत ई होवे भैया राज लगा आपको भी प्यार से स्वागत करते हैं तो राज तो ई मलाई जो आयल है खई भी में तो बोले ख्रोन कॉन्फ्रेंसी के चीज बन होगा अब का बोले हैं बोले जितना ख्रोन कॉन्फ्रेंसी के आदमी चीज ले रहा बोले सबके पैसा हम लोग तुरंत भरब बोले सबके पैसा तुरंत बोले बोले जखियन बोले सही सब तुरंत ड्राई हो के तो एक बारे में बहुत घींचा तानी दे आना हमें भैल है तो उसे पूछेगा तो के 300 मिलियन अपने रेक्साक चले तो के पैसा है अदमियन के भरे के अब ओकर बारे में हम बताब कितना रेक्साक चले है खेबी भी के बारे में जो आदमी रेक्साक पान करी से और वो खेबी भी चाहे वो पैसा भरे के आदमी लोग के और इस सबके पैसा है ये ना और बोले है जो अदमियन अनफ्राक कर ले रहा बोले वो अदमियन के बोले कि पैसा तुरक कर जो जगह एक दम ना हो पावे तो एक बारे में बहुत जुगू जुगू भैले बहुत फ्राक ओके स्टेल करी से तो अब ई का बोले है स्वार्थो अन्ना स्वार्थो स्टेलनी सूरो पावीरो बोले है गा बोले ना बोले चीजो ऐसे ना है बोले जो अदमियन के सखुआ अबे रोंत ना भैले और सेंट्रल बैंक में पैसा भर दे से बोले ऊ पैसा बोले तुरंत भरवे मैं जो आदमी के साख रोंत हो गए जेकन ट्रांसपोर्ट मिल गए है खलिश के और बोले ओके बोले हमें ना मा के तरह दराई के नहीं इस सब के चलत तो ओहो एक दमोल ले लेवत और अपन आदमी लोग के बांटत भैया हमार बात तो सफा है तो लो जानो है खड़ा मजूरी चोखा काम उजोनी के काम है बतावे के सोझा रास्ता हम कोई पॉलिटिक के नहीं देखी जैसे है ओइसे हम बताएंगे दोस्तों तो आप ये बोले हैगा एरफ पख रेक्ट नार एकदम रीच फॉर लीडर है बट अफगरोन नीट इन अमेरिका कोमर फॉर टर्क बताले फॉर द दारफॉर बताले बदरागन alleen personen op rechtspersonen die het conversietraject niet volledig hebben kunnen afronden, zullen de door hergestorte gelden van de overheid terug ontvangen. De minister stond er uitgebreid stil bij deze kwestie en benadrukte dat het beleid gericht is op zorgvuldige afhandeling van lopende en niet afgeronde grondconversies aanvragen. To ye sab baat hai hamare janta onderzoek naar Sant afgraving, Grand Cake wordt voorgezet. Grand Cake met bhaiya Santi Khodawe Sarmakka mein. Ab minister bole ekar onderzoek khali yehi khal kaam hue hamar desh mein bhaiya. Aur jab kuch vet hoega tab dekhiya batave hai. Dwang samundrikun swar aur bakhrooting van GBB. Bole minister jo bole hega bole hum log ke itna dwang som hega van 300 miljoen SRD bedrag. Bole deze uitgavenpost legt een aanzienlijke druk op de begroting van het ministerie. Volgens Suropawire is het noodzakelijk dat dergelijke schulden in de toekomst worden voorgenomen. Voorkomen. Euro apparetto mangen. Het meelijke paisa bare bole. Je me moest kala ja. 300 miljoen. 300 miljoen. Abetore muri pe karja. Artu mangen. Jo na remien khetwa apan kinat raha. Okar paisa bare ye bhar paye paiswa. To ke hai paiswa bare ke. To ye sab amarte santukhito. Sab koi ke bole raha. Ki je ke apan jaga. चलो ग्रोन कॉन्फ्रेंसी से एक दम कर लो आदमी लोग करी से जो नो के शेकर है थे कितना आदमी है वो ट्रांसपोर्ट धर के कागज खेत के और कर्जा निकाली से बैंक में और जाए के घर बाऊ करके हुआ रहे हैं कितने आदमी है गा देखी सो के एक दम काज शुरू करी से आउट ब्रेक करे के अपन जगह जमीन और मलाई आयल है जो एक बार इससे और मांगे सब चीज निकाले एंड दैट इज ऑन ईयरलग मीन से दैट इज शेकर ऑन ईयरलग हम जाए तरी तेलवा के बारे में भैया तेलवा के बारे में अमेरिका सऊदी अरबी के ओर हम जाए ना फॉरेनर स्टेटस तो सऊदी अरबी से फन
troon als grootste olie-export ter wereld. De Amerika bolle hè, sabse barka grootste olie-export jon kare dunia pe, u Saudi-Arabië hè, hebben de Amerikanen een positie ingenomen die decennia lang werd gedomineerd door Saudi-Arabië en Rusland. De verschuiving markeert een belangrijke verandering in de mondiale energiemarkt en versterkt de invloed van Washington in de internationale oliehandel. तो पौसे खत्म हो गया है ए हां दोस्तों तो ये बात है हमारी जनता की अमेरिका बोले हैगा अमेरिका बोले है बोले हैगा सऊदी अरबिया फन थ्रोन एज ग्रोस्ट ओली एक्सपोर्टर वीरल तो बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा गया है तेल के बारे में दोस्तों लेकिन आप लोग को हम छोटे रूप में हम बतावत है

14 बरिस के बातचीत हुए 14 यारख के और मन अन खोदन जो ने को 14 बरिस लड़की के मिसब्रेक करेला भाई मिसब्रेक कर ले रहा हां रांच द्रिय फे तक यारख को आदमी त्रिय फेर तक या रखे के गर्मी ये भैया का करे रहा ये ससुरा का कर ले रहा मंगलवार के भैया मंगलवार के एगो 14 बरिस के अपन बीर महिष्य के एगो लड़की के भैया सेक्स वील मिस ब्रेक करी से ओकर माई द मुदर फन स्लाख तो फर दे द अनगिफ्ट और बतावे गए कि ये लड़किया बोले नर फोर कोम द मान हैड महिष्य में टू स्टेमिंग फन द मुदर अन लिफ्ट गेवन सो हेवन न लतूर माई वा बीट युवा के एगो लिफ्ट देवाए रहा बीर मान के संगे तुन द मुदर इवन लातर बेल द लातर जब बेल कही से अपन बिटिया के तो ओकर या घरे ना रहा तो न रीस टाइस वास नाम से इस दिन सांसी नीत ऑफ इस दिन इंतार ना उठाई से ओकर बाद में ले से तो ये रमिया का करे भैया उन लड़किया के 14 बरस के लड़की के ले ले भैया तू जाने खोड़ दे नुआ वाला घरवन बहुत ढेर है सर नाम में समझ गए ले ना घरवा आज मैं तू रहे हैं पेंशन वन के बाद बोली ला मऊ सालन हमारे जाने हैं कि कौन खोड़ दे नुआ बात हम बोली ला पेंशन वन भैया वो तो ले के जइयो पाचे खोड़ दे लग जाए जैसे नाटक के पर्दा खींच दिए समझ कि भीतर में कोई ना देखे कि कौन मां जा है और कौन चकल से हुआ अंदर हुए है तो ये बात है श्री नाम के खोरदेनुआ वाला घरवन के बाद बतियाई ल तो ये आदमी 14 बरिस की लड़की के जो मैया बोले रहा बीरमान हम बिटी हुआ के तेरी घरे पहुंचा दियो तो ये आदमियों के लेके लगा लगा जाए के खोरदेन वाल घर में घुस गए भैया और ओके जाए के वहां पे मिस ब्रेक करिसेगा सेक्स वील ही मिस ब्रेक इन पेंशन ना द दासो हेड मैच टाइस अफकसेट हेवन न मुदर स्काखल न तिल अपी जाएगा बैठ के हुआ पे खोरदेल वाला घर में ना लोहा वाला घर में अब रही चक्की पीसे हा तो लोहा के घर में अब उत्तराली के पीछे जाए के ई भैया हो या ई बात हुए लातूर के बात हुए दोस्तों लातूर में के रहे आप लोग जानो है तो ये सब लातूर के बात है जो आप लोग को हम यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को बढ़ाते बढ़ाते अब देखो भैया सेशन 20 मिलियार्ड के बातचीत हुए सूरीनाम में भैया एसआरडी के सेशन 20 मिलियार रैम सेशन 20 सॉरी मैं से सेशन 20 मिलियार खात नार द स्कुलदन लास्ट स्कुलदन जो कर्जा भैया ओकर पैसा भरा है सेशन 20 मिलियार भाई यहां पे बताए गए हैं बोले हैगा दिस यार टू इरेशन सेशन 20 में wordt opgeslokt met door rente, oplossing andere financieringskosten en staatsschuld. Uit de nota van de wijziging blijkt dat de via het ministerie van Financiën en Planning 26 miljard is uitgetrokken voor financiële verplichtingen die voortvloeien uit bestaande schulden. Maar ja, te deko, ja, pi ketra ketra cheat legal paisa ke baare mein miljarden ke baan cheat hove hiya dosto hum bole to log ke bata de ki directoraat financiën 25,38 miljard aur hiya batawe hai en belasting ke 0,91 miljard to aise aise paisa ke baare mein bahut lamba chauda likha le dosto aap log khud padho aur samjho baur suriname bhaiya hamare sarname garhan lagal bhaiya जैसे कोई के शराब लगल है भाई अरे जब पानी से छुट्टी ना है तो चोरन उधिया है चोरन जब उधिया है भैया तो हमारे रखेरे कुछ कर ना पावे फन ठीक है स्त्रात सब चिन्ह छित्तीर के भित्तीर होएगा भैया रास्ता बरखा मारी से देश इन बुराई के धरती से भैया सोचो और मित्र लोग की से दिन बोलेगा ऑफिशियल द तरक्कीर फन एल नीनो इन द स्टिल ओशियन बफेस्ट दिस नेचुरलक क्लाइमेट इफेक्ट कैन uitgroeien tot een krachtigste एल नीनो सिंस हैड बिगिन फन द मीटिंग तो
बताए गए है भैया सूरीनाम में, घर में अदमी के पानी है, यहाँ फोटो देखी घरवा आधा बुड़ गए भाई, आधा बुड़ गए है, और बोले है का बकेल फन मीटिंग नेगेटिव फैक्ट में एक्सपर्ट वॉश क्यों करेला कि वेरल तो एक्स्ट्रा गर्म होगा जैसे इसे पानी इतना जोर बढ़े है, ओवर स्ट्रोमिंग हुए है, झूरा हुए है, आग लगे है, क्रख्त स्ट्रोमिंग हुएगा, और अमेरिकान से मित्र ट्रोल के दिस नोआ इस एरकल्स फन 63% दिस एल नीनो इन het najaar in de winter piekt en daarmee behoort tot de grootste ooit geregistreerd. तो इतना पानी हम लोग के देश में भरे भैया चारों बगल बुड़ल है, गाय गोरु के बड़ी आफत है, जानवर के बहुत आफत है, खाना पीना का आफत है, हमारे जनता के आफत है, काम धंधा ना जा सके करे ठीक से भैया, तो ये सब बात है हमारे जनता बड़े को रास्ता इतना चित्तिर के बितिर है और कोई बनावे ना है जो उन समय पे संतों की सब कोई नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद वा करियावतरा बोले इका करे फे हा फे के करियावतरा। अब तो भैया और खराब हुई है रस्तवा और बने न है, अब सब बोले बैताली का करे, बैताली बोले हम बदरई बाटी ऐसे थोरो बोले मीवा लुक मोनी बोसी फॉर ट्रैकिंग फन फन हो स्ट्रार को फॉलो फन ट्रैक आउटफुरिंग्स फोनस एगो फोनस चल ले भैया बैताली के और फोनस वा पढ़े के इतना लाती हुई है रस्ता सब चितराई गए हैं। एमा बोले हैगा वन आईडीबी अने बोले वन आज द आईडीबी बैंक स्टार्ट इस ओम स्टार्ट सूरीनाम एरफान तो वेर होदन ए रेकलक फोनस आउट टू फोन बतेगन दैट इट डी फैक्टो दैट ऑल सूरीनामस बेड्राइवन बे टेंडर्स फ्रॉम द आईडीबी बैंक नीट मेयर कैन रीगन ऑफ द सूरीनामस रेकलक मग। तो ये माँ बहुत लंबा चौड़ा भैया बैताली के बोले है आनी में बतराई बैताली बोले फरतराखिंग भैल है रिहैबिलिटेट द प्रोजेक्ट फन फन रूख स्ट्रात स्लंगन हाउस स्ट्रात के बातचीत है बोले है का स्टार्ट ओम खान फोनल भैल कर तक देंग 10 जुलाई 2025 में और बोले है बदरेव रियाखेदार में नमस्कार के पॉलिटिकल डिस्कशी दी द अफकलोपन प्रयोग ओवर प्रोजेक्ट इज ऑन स्टैंड कब बनी कब ना बनी भैया सीफा यानी वार के को बसवार गए हैं और बोले वैसे वार ऑफ हेयर अब और दिलिंग वास आउट को फूड फोकस बाय ताली फॉलो द पाथ नहीं इतने तो रख अप्रैल आउट नो रखिंग ऊपर तक हुआ पे भैया फोनस ऑनस जितना चीज है उस सब थोड़े देखे कि रखें थे जनता इतना दुख काटे है इस अकवाम इर्दर अरे का बोले अपलोस कर ले कि हम लोग के देशवा के रस्तवा स्वा तरी बने ऊंची छुआ पे थोड़ो भैया हुआ आलस कौम खुद आ बोले तमारा हे अरे चीज बोले मोरख कौम मोरख बिहान तमारा ते मोरख करत करत हमारे जनता मोरख करत करत हम लोग के और रास्ता और खराब हो गया जनता बहुत दुख काटे तरी जाए आम्स्टरडम की ओर भैया आम्स्टरडम में और परी आदमी पकड़ा ने भैया आम्स्टरडम में एगो जबर एक्सप्लोसिव भैल आम्स्टरडम में बीते हुए रातों में और बोले हैगा कितना ओ तो बस खाद खोइएगा एमा सिपाही सबके खोजे है कि कैसे है कैसे ना है इन नख फन दोन दाख और फ्राइडे के एगो बड़का एक्सप्लोसिव भैल है एगो स्पोर्ट्स कोल है रिमेनन में और उस दौर पर बन में आम्स्टरडम में इतना बड़का एक्सप्लोसिव भय रहा। तो ये बात है रकेश मुझ भी आ गया हमारा प्रोग्राम में तो भाई रकेश आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं जनता हम जाए तरी अमेरी वेत है भैया अमेरिका गोले उज्जर घर हाँ उज्जर घरे है इस वेत है ईरान अकॉर्ड में ऑन मंडलन फन कैरन प्रोग्रामा। अरे भैया कैसे में के विश्वास करी तुम के भाई ये बेर बेर बोले है ना ना भैया ना रकेश बेर बोल खुरुचेस इतरक डंकी वेर रकेश तो बोले वाशिंगटन बोले हैगा अकॉर्ड ईरान कर दे कि जितना ओकर कैरन वापस सब ओंधमांतल करे है हम ना जानी विश्वास करी कि ना करी दैट लेग नीट ओवर इन द कोमे में द ब्रेक ने ईरान से स्टार्स मीडिया दिस टेल देम दैट ईरान फर्स्ट होत ऑन द ए सेल्फ द कंट्रोल द होल्डन ओवर द फरेक्ट यूरेनियम और बोले हैगा ई बोले है त्रिम बोले है और ईरान बोले ना
ना बोले हम अपन यूरानियम के अपरे से बोले कि हम ओके कंट्रोल करबे, बोले ना अमेरिका करेगा, मर फोकस अमेरिका तेहरान में बोले है, बोले इंस्टेम कर दे से न्यूक्लियर मटेरियल फनीतक वर्ड वो फनी सो ईरान अकॉर्ड से मेट इट ओपन फॉर स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्मुज एंड सो हैड लैंड पास टुखंग कैगन तो सेन बफरोरन तो खुदन अस हैज इन फॉरप्लिक्टिंग फॉर द ओवरइनकम्स इस नाक कॉमन वन ईरान के से बफरिश कर दे से बोलो मांगे हॉर्मुज कोलेस्ट्रेट हॉर्मुज जो ने बोटियर पास है हम लोग के तेलवा सस्ता है। तो रजेश किशुन भी आ गया है, रजेश आपको भी यहां से हम बहुत प्यार देते हैं सूरीनाम देश तक। तो इतेल के बारे में भैया जे ओतो चलावे वही जाने कई वजह लेगा, लेकिन हमें जाना एक दुनी तरी सस्ता वजह आज हम बोर्तो पास भली ते तरी हम देख ली बाटी भैया कि कैसे है और कैसे तुरिया ना है हमारे जनता। तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम आम बढ़ाते हैं सुनाते हैं। यहाँ पर देखो क्विक के बारे में जो रहा हम बताए रही क्विक दीपस्ताल जो स्कैर फ्लाइट में रहा और यहाँ पे आए नवा न्यूज आई लेम देखी ले दोस्तों बतावे मोकल के बत्रोके नहीं पॉलिसी ऑन द सॉक इंसाक क्विक दीपस्ताल अरे बोले सिलेंडर है जाने खास फ्लेशोन सिस्टम में तो सिलेंडर 11 गो चोरी भाई ले पॉलिसी ब्यूरो खैर फ्लाइट पे बताए रही और बतावे है का और फॉलन इज कि ई केमिकलियम जो है इसे में को कंटेनर में बंद रहेगा अख्तर ने पॉलिसी को ट्रेन पे सिपाही के और ऑफ द इन कैपिटल द इलेक्शन ऑन सुक करे कर बारे में दोस्तों और बोले द सिलेंडर्स वेयर रेकनोमन बे इन ब्रांग बे द कंटेनर। तो यहाँ पे भी बतावे द पॉलिसी वॉर्स की उधर खबरें फन क्विक स्कार लिकेज फॉर द सामने लिविंग क्विक वन अमिलल है बाकी हो फ्लाइन वो अपनी मुखलक बत्रों के नहीं पॉलिसी ऑन द सॉक इन इंसाक अने क्विक दीपस्ताल के बारे में तो लोग जानो क्विक वा सब हन सोना खोजे है ओमा ओमा जहर है भैया और क्विक इस खफार में से और क्विक इतना सब हन बेल लांत में खबर करे कि क्विक के मछली छिरी खाए लाइक ना भैया वह सब में बीमारी है क्विक इस दी खेमिस इस। तो ये बात है हमारी जनता। अब देखो हम जाए तेरी ब्रुंसी को वो लगे भाई ब्रुंसवेग का बोले हमारा ब्रुंसवेग तुम्हारा ब्रुंसवेग एक्सवीपी बोले एनडीपी पार्लियामेंटर बोले ईबी जोंस बोले है बोले फ्राक्स एक आवार ओम दोनी ब्रुंसवेग बोले कि इतना निगेटिव बतिया एनडीपी के बारे में बोले जो क्वालिटी मुबा तो बोले जो ना कर पाए तो कहे निकल जाए फोकस एनडीपी इस दिन मनीर ओम तखान बोले हाँ पर क्वालिटी पार्टनर से लेकिन तुम लोग जानो भैया ब्रुंसवेग के मुंह जो है भैया जबड़ है उस बोले है और इस सबके नाम वही लगे है 100 ओम खान अपन क्वालिटी पार्टनर से बोले ही प्रकृत हैगा वो बोले ब्रुंसवेग वर्ड सुप नोइट सो हेट खेतन आल्सो वर्ड अपखदीन। और ये बात है जो उस बोले है एनडीपीर बोले काहे के बोले क्यों इतना नेगेटिव बतिया है तो चिनुआ के देश में जाए भैया वायरल प्राइस ओरी प्राइस रिलेटिव लाख हो तरे भैया चिनुआ बोले रिलेटिव दुनिया भर के तेल के प्राइस सका करे के बोले 20% फॉर वायरल प्राइस ओरी फोर्सिंग इन वेखफालन और हमार से नाम में मांगेगा सिटवसिया का बोले सब्सिडी निकारे और तेलवा और महंगा हुई हमारी जनता। ये बात है सूरीनाम के सूरीनाम के। अब देखो भैया कड़ाका में सूरीनाम में को जगह नाम बा कड़ाका बोले कोकाइन जरा यारे बड़ा जोर से मन करे हंसे के कि कोई सुन न पावे वो बतिया है तू तो बोले कड़ाका में 100 किलो कोकाइन 100 किलो मरवाना बोले जरैली बाटी है भगवान सिपाही कुआ कैसे विश्वास करिए तोरे घर में से कुएं चोरी हो जाए तू जइयो भैया को कई न जरावे अरे भाई पिसान नस्कार सो जाए भैया बड़े वाला आवे के समझ गए लो हम कुछ ना बोली ला।

का में भैया इतना ढेर बोले को कई ने सबन जराई से, लेकिन सोशल मीडिया पे मियानी चिल्लाए चिल्लाए खखार खखार हंसे हैं। हम लोग के पॉलिसी के सना में विश्वास ना करे भैया, बैंक में से ना उस सबके क्लेश में से भैया सोनिया चल जाए, पैसा चल जाए, दृश्य चल जाए, क्विक चल जाए, तो ई कई कौन कैसे तू बोलियो भैया की को कई ने जराई से। और हमारा निश मनोहरत बेचारा बोले मी आनू बोले नो तेज मी बोले हमें ना तेज कर बोले हमारा हाथ बड़ी लंबा है। तो यहां बतावे गए भैया हेड किंग ऑफ ड्रिक्स पीरियड सीफट इन मार्च 2020 तक तो सीफ यूनी तो मार्च में पूरी मिलल है भैया को कहीं ना मिलल है तो वो होएगा वो होएगा भैया तरी सोचो तो सीफ यूनी तक बोले कि ना द फर्स्ट को की ने वेट ओ सीफ 1350 मिलीलीटर फ्लुई बार को कहीं ना फर्नीता फर्दर बोस्टन द पार्टी एट 189.64 ग्राम मरवाना 12,706.68 ग्राम हाश 235.5 किलो अने असीसी पेलन। और ऐसे ऐसे हैगा तो बड़ा मोइले के विश्वास करे के राजा का बोली हम सुचित लोग के एगो मोई वाला सोका सोका सुना दे तुल जाने सोका सोका तो अरे दादा प्रिंस हलीमा भैया चटनी सोका सोका। अभी हम आ जाएंगे इस गीत के बांध में हमारे जनता

ली और क्या क्या सुका सुका प्रिंसेस हलीमा का ये जोंग है और ये चटनी सुका थी हमारी जनता जाने सुका सुका पे वो तो मातिस गोड़वा हतवा हिले लगे तो तेरे जाने चीज कैसे जा तो दोस्तों हम चलते ही और आगे को लेकर तो अर्चना देवी का हरनाम भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में जुड़ गई आपको हम स्वागत कर चले हैं अर्चना जी तो आप लोग जानो है जेकर जेकर जन्मदिन हुए फरियारी हुए है तो गाना हुए है बजाना हुए है नाच हुए है खवा कटा है कहीं कहीं मुर्गा कटा है कहीं कहीं क्या क्या होते भैया माँ वे माँ का अलमाल अनहील लीक दाम ए फरियार दा खुद यार रख है तदवीर अलमाल हो इट गात अलमाल इन ओवरऑल इज दैट सो वाज नीडलेस रिमार इट इज वेल इट्स अंडर्स न्यू मेंस एक 44 यार के आदमी भैया वो कर जन्म दिन रहा अरे अरे मियां बजर मजन मेरा खूब नाचत रहा गावत रहा ओ हीरो आई ओके स्कूट पकड़ के और हाथ बोई करके और लेके ओके चला गए ले मैया ना गए खबा खवावे किनवावे ना पकड़ के बन करी से धोई लात मार के फर यार ये के रोज भैया ये रमिया का कर ले रहा ये रमिया का कर ले रहा ये रमिया 2026 जनवरी में एरो अमेरिकन डॉलर सफर दस्तर कर ले रहा अपन वेरखीफर के बोले पे वरों को दापे ही मुझियांग उच जुआ कर ले रहा तो बोले ये रमिया Nadat binnen bij onregelmatigheden wordt ontlegd, willen Paiswa kahan ja hai. Dat ze bij je onderzoek kari se bhaiya karib 1 miljoen SRD. Iedmi kamper se verduister kar dera bhaiya. O merkelijk is dat de verdachte juist Joris Faryari hai. O hi rochuk OM aur khadbord ke liye chala gai le. O kar Faryari manawe. To apan bas ke hi itna bana de il kari se mense. Bole hai. चोरी करियो भैया तो कर सजा तो भुगतना पड़ेगा है कि ना आप लोग सबको जानो रमावतार सिंह के वो हैगा का बोलेगा फेस के आदमी है एक रूम है रमावतार वेस तो रमावतार सिंह के बाद बतियाला एकर बारे में रमावतार सिंह बोले हैं बोले 405 तक दर्जन अमेरिकन डॉलर से रिनाम भरी सेगा व्हीकल लाइसेंसी किनी सेगा एसटीफीएस खातिर क्यों वहाँ पे समा वही का देख सके हैं और बोले है फीस प्रेसिडेंट जोत्रे इस्लाम किनी से बफेस्त करील है और बोले दही समा त्रियाल वत्रे फन खफूलक अंदर वेर स्टेल एक नो वेस्टर मौतार सिंह ने प्रोग्रामा लाला ऑब्जर्व पे बोली सेगा दिस ना ब्रोथ एंड स्पेलन अनबिडन एंड हेड फुलक खरीद इरफान wordt door hun gesteld. Het WK gaat morgen van start in mijn bolle merk zo goed te zullen hoe je dus toe. Oh bolle hega Jo kies trobi nanga a volk ibad bolle he. Indien de regering zo besloten om geen WK uit te zenden, jo kies trobi nanga volk, benadrukte de econoom Ramautar Singh, geef aan de regering enigszins wel te begrijpen, je wil wel blijven zitten, je wil niet weggejaagd worden omdat je geen brood en spelen hebt aangeboden, wordt de nadruk erop gelegd door de Ramautar Singh. Bijna mi kot mi banti. Ja, bole, wo bole, echter, bole prijskaartje nadat de beschouwing wordt genomen. To bout manga ter Ramautar Singh ke bare mein, aur batai sega ki itra itra paisa lanti bhari se aur u lisensi kine ki kisi dinam mein tum veeka dekh pao bhaiya तो यहाँ भैया एक आदमी भैया तुलो जाने गेयरबॉक्स कौनची के बोले तो हमने नीदरलैंड में बोले ला कॉपलिंग्स ब्लॉक हेल सिंपल कॉपलिंग्स ब्लॉक व्हाट इन नीदरलैंड का सेक्स सिर्फ नाम में बोले गेयरबॉक्स है दर्जे ग्रर से करे तो गेयरबॉक्स का नाम कैसे आए ले भैया पहले जब मोई से अपन कॉपलिंग्स कॉपलिंग वाला दबाइए नले क्लच प्लटवा ना दबाइए तो जब दरियर बोले क्रर तो को बोले गेयरबॉक्स कि गियर में चल गए बॉक्स वही नाम श्री नाम में अब तक से बोले गियर बॉक्स मही कॉपलिंग्स बॉक्स
तो एगो 49 यार के में भैया गियर बॉक्स के बोले वो दतरा है तो जाने सिन्हा में सब कहते बताया था बोले अमाना दतरायू हर एक चीज कोई कुछ जाने बना बोलो दतरा है चीज की यार तू जानो दतरा है तो भैया के हम भी बोले लाई दतरा रहा एगो बेच दे ही भैया लेकिन दतरा गियर बॉक्स के कौन चकलस करी से हुई तो बतिया है हाँ भैया लोग गियर बॉक्स के अदमिया भैया दतरा का कर गियर बॉक्स के दतरा आदमी लोग से सिरे नाम से डॉलर लेवत रहा अमेरिकन डॉलर लेवत रहा एरो लेवत रहा अब बोले तोर हम कॉपलिंग्स बाग मतलब गियर बॉक्स हुआ बोले एकदम मुहूर्त रिफिसी करब कि जैसे नवा हो जाए हाँ बोले जैसे नवा हो जाए बोले कि हम ऐसे तो मौका बोले गियर बॉक्स बना देवे और आदमी लोग से पैसा लेवे भैया और बोले तो नीतू हेवन 8 आदमी बोले गैल है बोले दतरा के ऊपर गैल है नालिश करे कि हमार गियर बॉक्स हुआ बोले ना बनाई से और पैसुआ खा ली से ये के बोले दतरा भैया द पुलिस इज लाइक नीत एदन मेर पर्सोनन स्लाक्टोफर सेन गवर्डन फन द वर्कप्लेस फन द verdachte in het kader worden personen die ineens geld hebben betaald voor reparatieonderdelen om import van voertuigen onderdelen zonder het afgesproken te hebben ontvangen. Gearbox aan een kabel gearbox keert me van ja in de garbarije. Maar ja, ja, we hebben de killer. एक बहुत जबर फोटो धरल है लिखल है बड़का में सिन पे कैबिनेट फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड मॉन्स्टर दैट ऑन्स फर्स्ट लिंट अरे दादा ई चीज के बोल दे से भाई यहाँ बताई गई है कि 4/2026 में बोले प्रेसिडेंट रेम 1.2 miljard SRD toegewezen Van dat bedrag gaat bijna 830 miljoen aan salarissen van 2200 personeelleden. Otra kamkarten, 1,2 miljard, maar 830 miljoen kamkarten, ke paisa bara hai. Een gigantische som die in geen verhouding staat op de prestatie van dit apparaat. Van efficiëntie naar inflatie 1990 mee. En bolle 50 kam karten ke. Bolle mopstijde. Bhaiya bari lamba chowda ekar bare mein likhal hai. Lekin hum upar bata dela. Host yo likhal hai. Cabinet van de president. A monster dat ons verslindt. To ekar bare mein Rupesh Jagannath. Adviesraad DNL gelieke ze. Suriname kan zich niet model, niet lager veroorloven. Het kabinet moet worden teruggebracht tot een functionele kern. To ye baat hai dosto. To Tony aa gaya hai. Tony Sri bhi aa gaya. Hamare program mein jud gaye hai. To bhaiya Tony ji aapko bhi yahan se hum bahut bahut pyar dete hai. Aur swagat karte hai. Hamare Tony ji. जनता एसएलएम के बारे में भैया ऑफिशियल बोले सु ऑफिशियल खलान से दूर अंबासादर इन एसएलएम बताना सु का है तोनिया लिखले SUSU लिखले भैया सु ऑफिशियल खलान से दूर अंबासादर इन एसएलएम भाई तो एकर बारे में बताई सु है कौन सी है बोले इन सुरीनाम से म्यूजियम फंड 6 यूरोप ऑफिशियल बोले हैगा प्लाट फन सु अन इनिशिएटिव ऑन 27 अप्रैल 2027 में बोले duizenden invloedrijke persoon van Surinaamse afkom en mensen met een warm hart van Suriname blijven wil brengen in een passenger terminal Amsterdam. Het doel is om de gezamenlijke projecten te identificeren en te ondersteunen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. De Susu ke matlab de heel lang vreugde van de Susu summit die april to ee baat hai en Amsterdam ke bare mein dosto lekin hum aur aage batai bhaiya
Wauw, ja. Suriname, deze met Tolonje, joh, dat ik jouw bord hangen, to. Maar je hebt een rastakke bord hangen, uit officieel, hè. Maar die bord toe met een chargo bord hangen, hè, Tony. Ja, een likkele perceel te koop, te taxi, ba, te i, hè, te uba. मामी जी के भी हमारा नमस्कार टोनी जी तो बात ये है कि अब क्या हुआ तू जाने हैं दमुआ पे पाल गाड़न ले तो ओमा दुनिया भर के भैया बहुत आदमी अपन अपन रिक्लाम ठोके रहे हैं तो अब का बोली सेगा श्री नाम के रखीरिंग बोले आनोमा बोले बूटू लगी बोले अपरे तुलो निकाल लो नहीं हम अपन ओ तो पठावे हम में तेल जरी कि सब पाल मर से तुलो के रिक्लाम बहुत निकाल के तुलो अपरो निकाल नहीं तुलो के कस के बूटू लगेगा तो जब कोई अपन बहुत टांगी से और लांटी के अने स्त्रातन पाल में हाल तू दिन वेख में से अंदर क्राइक चुन खरोट खरोट बिगी बिगी बूटू वन तू जाने लांटी तो पैसा खोजे कि कहां से हम निकाली न तुल अब देखो का भइल है अब का भइल है अब बातचीत ये हो रहा भैया अंत फ्रीड ओवर आउट ब्लेवन फन का फी और बताली ontvangers wachten op de 1800 SRD. Toen kitra admi bole he, ki kakafi konchi he. Kakafi konchi he. Kakafi na he kamer van koophandel. Kafi ka he. Kakafi asai sanam mein sab pawe he. Aur konchi he okar bole he ga. Koopkrachtversterking stond ook ik het tijd per 1800 rupia admilo ke extra mile he JK yani ki inkomen kam thi bhaiya ab kaam bhail he का भइल है कितना आदमी ना पाई से कितना आदमी ना पाई से तुलन जानो ही रखे रिंगो जब बैठे हैं तो कम करतन के पैसा ना रे भरे ते ई ना अब देखो काका फी लोन आदमी लोन हमार बुढ़िया पुरनियन बैठ के अगोरे है रोई काली कि कैसे हम अपन कोप क्राफर्स तैर के वो पाई तो ये रिकावासी गीता सी गुलाम भी आके पहुंच गए हमारा प्रोग्राम में तो गीता जी आपको भी हम यहां से बहुत बहुत प्यार देते हैं साथ ही साथ रोई काली को बहुत प्यार देते हैं जो लंगडाउन से हमारा प्रोग्राम को और इतना जोर तोर से सुन रहे हैं तो रोई अब देखो का फी जोन है और हैगा कोप क्राफर्स टैंक आदमी ना पाई से आदमी लोन अब सोच में पड़ गए हैं कि हम कैसे मुर्गिया की ना हां भैया ने रकेश केप तक को भात केप तक को भी पलवन में मार ले अंदर दांत तो रजेश जंगली आपको भी हम स्वागत करते हैं तो जोन बर्तुआ पे टांगल ले भैया कि यहां मुर्गी बिका बकुआ बिका खेत बिका है कोंची बिका है दिमुत आलमाल दराई जनानी करे लांटी तो के बूटू दे जब तू लांटी के रास्ता वाला पाल में मल्ले रही है तब औ हो सके एबीएस भी ना मांगे दोस्तों तो बात ही नहीं ये हुए है का फी के बारे में आदमी क्लाख करे है बोले हम पैसे ना पहली बाटी बोले हमार पैसवा कब है रोज जाए बंकुआ में पैसवा डाले है अपन और देखे ने बड़ा दुख के बात है रजेश बड़ी दुख के बात है कि लांटी के चाहेंगे कोप क्राफ्ट फर्स्टेरकिंग 1800 तो देवे के और हमार बुढ़िया परनियन जी के पैसा ऐसा ना है उ सब जा है और जाए के पर बंक पास डाले हैगा खेल ऑटोमेट में और देखे हुआ नल है तलेर खस्तल को मनी मेंशन आ रहे हैं उ सब सोचे ओसी से हम और जाबे का बोले हैं और मुर्गिया किन लेबे अने रकेश मुर्गिया किल्ले बे अपन लड़कन खाट बना देबे दाल किल्ले चाउर किल्ले कुछ सौदा पानी कीन के जाबे ओही पैसो 1800 वो मसे कीने और ओही से हाथ झुलावत तो लेर खस्तेर और थूक लीलत बिचारन झुरान ओट ऊपर से बरसात के मौसम में पानी में बिचारन भीजत जा है गोड टब टब पानी में जा है और पैसा ना मिलल भाई तो मेर तो पर्सोनली का फंक्लिक सेंट फन ओवर हेड स्टीन ट्रोकन ना द पेन आउट maanden om het goed te opnemen, maar constateerde dat het bedrag nog steeds niet wat hoger gemaakt naar hun moneycarta. Sommigen vergeleken de huidige situatie met de onder vorige regering. Toen je baantje het heet, dan bolle hij
toen Chan er was, werd de KKV op tijd gestort. Oude bolle je zijn tokira aan te bolle hem leuke koopkracht versterking en paisa op tijd stort over tra. Jeb se Simon Rusland aile he, paisa hem leuke opstort, maar toen hielo na bij thailo bato mousi. Mau silon baithai se ta ab jao ab naro bole jab khet chidiya chum gaya to baat mein pastane mein kya rahe gaya hai na Gita ji to ye baat hai to hiya pe likha gaya mino abino wamoni and me reikanta pa ka cafe ala leisi te ayu rakhere dis mus pai a ka cafe na wan problem den sani dis no boom sei hey. Volgens haar had zij de moment zelf geen geld om voedsel te kopen terwijl zij bij de automaat stond. Vroeg zij een voorbijganger om hulp. Een andere bijvoorbeeld riep haar toe dat er sprake zou zijn van een storting waardoor de uitbetaling nog niet was verwerkt. Ja, als je sociale zaken kan willen administratieve afhandeling met de financiën, willen hij Servin Falis bevestigd dat de betaling van de KKV nog in de administratieve afhandeling is. Volgens hem ligt de verder verwerking momenteel bij het ministerie van Financiën. Oh, Atala Sawa Katin, Abhayanon Rowe, Jeke Nahe, Uroiga Nabhaya Jangli, Jeke Kapet me Bukalagal, Chota Chota Ladakan, Mayake Nahe, Bapake Nahe. का करीब हाय तब उस सब के मुंह में से सराप निकलेगा दुख होई आंख में से पानी चोई और ये रखे रे ऊंची जुआ ना देखे है और ना देखे अब बोले संतोखी के समय पे हम लोग के पैसा ऑप्टाइट मिलत रहा और अब ना मिले है तो ये सब सराप लगी भैया सब के सराप लगी खाई क्यों है आदमी लोग के इस्तलीफस बहुत है जो उतर पास ना है तो कुछ ना है वो तो हुआ धर के आदमी विश्व पे चल सके है वो तो हुआ ना रही प्रॉब्लम ना है ब्रह्मुआ ना है प्रॉब्लम ना है फिल्मुआ ना गई ले देखे प्रॉब्लम ना है मैं घरवा में खाइकवा चाहिए रहे के तो इस सब के साथ हम इस सब के दुख में हम शामिल है एंड या वत मुते शेख में से अब जनता जनता मुते खून खलुल थे अब पैसा लेनी ही नहीं करके अब अपन जीवन को नो रकम तुलन प्रॉब्लम ऑप लॉस कर तो दैट द 1800 नीट वेयर वेयर एन गेस्टोर्ट वर्ड तो हमारी जनता और आगे हम जाई है हाइटियन के भैया हाइटी देर द हेल ऑफ वेका हाइटी खदवांगन तो नहीं तो वैसे कर फन वेक और लोग सिंबॉलिक ओकर देश में बड़ा लड़ाई हुए है और तू जा रहे ईरान के और कौन-कौन देश के कपड़ी लोन जो लड़े उस सब के नाम अमेरिका में वेक हुआ हुए तेरी से बता दे तो ये सब बात है हमारे जनता और हाइटी बोले हैं ओपनिंग वेस्ट रहे जो फीफा में रहा वेरल कैंपियंस का पे खदोंगन है अंतवेरे फन द टीनी तो फरांदर ना द वेरल फुटबॉल बॉन्ड और अफबेली फन ओलोक सेने ऑफ द शर्ट फॉरबोथ कि तो के बोट अपन ट्राई पे नमक है कुछ और लोग के चीज के तीकन फीकन करे के और एक मारू सब के फरबीत के तो के कौन कम तू सपोर्टर बाटे तू सपोर्टर बाटे भैया तो के चाहेगा स्पोर्ट के चीज जाए के और लोग फल के चीज कौन चीज जो यहाँ पर कपड़ा फपड़ा पे धर के हुआ पे स्टेडियम में करिए तो ठीक करी से हमारा कहना ई है आज स्पोर्ट मैन मैन द मुझे स्पोर्टिव ओक आइकन यहाँ पे निक्स टमा के मैंने और लोग फन वेरल ए वार दर ओ मन दर नोमिए दर मुझे खेन स्पोर्ट सो इस मैन से सो इस तो तुलन जाने नीदरलैंड भी बलवा खेली हाँ तो और आइए भी बाल खेली दोस्तों एक बारे में आप लोग जइयो और हमारा दोस्त राजन द्वार का स्पोर्ट के बारे में जाना बतिया है तो कर काम में हम दखल ना नहीं वो ओकर काम है तो अब ने का भइल पोलन पोलन क्लिम ए सुंदर ए तोनी हाँ पोलन भैया कुछ बताए तू बड़ा जोर पोलन जा है तो de Polen kleep uitzondering op Europese migratiepact. Ook er matlab heiga, bhaiya, Polen heiga, is naar eigen apres u bole Europese, jon Europa ke asiel sukar se migratie hai.
dat vrijdag in werking is getreden. Het land zal geen extra asielzoekers accepteren. Oese bolem ikko extra asielzoekers na mangila Polen bolehe. To bolehega, het land is vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de Europese Unie en daarbij horende onkosten. Dus Tony, jij mag gaan, jij bent geen asielzoeker, jongen. Dus vakantie, je kooi mangen jij, dan mag je gewoon naar de Polen gaan. Dit is puur namelijk voor die immigranten. Doen aanwee, ja, de koka bheil hem. Aur aage ko apna hum program ko sunate hai aur sunate hi rahenge aur yahan pe dekho bhaiya Suropa Viro jo bole 300 million bhaiya dwangsom ho ke hai ga janta ke bhare ke lanti ke bhare ke aur jitna aadmi ke hai khadom jagara conference ne conference ke oke mange hai sab tarah kare to aasha samujh bhi aa gaya hai to cubans aurat bhaiya cuba ek aurat ke baare mein naam bada dher cuban hui ये ना आशा जी तो यहां पे बतावे क्यूबान से फ्राउन बफ्राइड uit mensen handen derde slachtoffer meldt zich op een op de luchthaven via Isabke 7 leke awe hai Suriname des mein क्यूबान के इसब से ले जा प्रोटेस्ट हुए हौसल करवावे भैया जबरदस्ती चलो हौसल करो जाने कौन हौसलवा ना चापू वाला हौसलवा मौसी समझ गए तो कौन हौसलवा करे राकेश मौसी से जाने है तो बतिया ये है कि औरत के समान लावे है क्यूबा के औरत के और बोले चल तो के हुआ पे हम मोई मोई काम देवे रेस्टोरेंट में जइयो बामी बनइयो नासी गोरिंग बनइयो नहीं मोई मोई काम करी और ले जाए के प्रोस्टोस्टवी में धकेल ले है और ना कि शहर में ले जाए के जंगल वाला प्रोस्टोस्टवी में धर दे भैया कि जाओ हौसल करो और ऊपर जाओ हौसल कर लो पर शरीर बेच लो बाटे तो तोर पैसो उ ले लेवे तो ये अत्याचार है कि ना वो औरत अपन शरीर बेची से प्रोटेस्टवी करी से और उस सब औरत के तू जबरदस्ती लाई के मैं आंध्र बदूले और प्रोटेस्टवी में धर देले बाटे फॉर वेंसन ना सुरीनाम से इन खबरा और बोले 9 तारीख के एक क्यूबा के औरत या भगल है भैया भगल है और जाए किसी पाही नालिश करी से डियर वार्निंग पर हमारी फॉर ब्लेफन मोक्लक्स लाख तो फॉर वार फॉर मेंशन हैंडल और जाए के नालिश करी से तो एमा पकड़ान है आदमी भैया और बोले है तेजस एक्सी वर्न ट्वी फॉर मीन द स्लाख तो फॉर आन getroffen दुगो मिलल है और बताए गए हैगा फॉल्स बिलोफ्ट से लाई से और बोले लाई से का अनफरक्लारबार स्कूल फन 6000 अमेरिकन डॉलर के बोले उसे के स्कूल दे से ना अनकम सो हन एन अनफरक्लारड स्कूल फन 6000 अमेरिकन डॉलर से opgeleerd ook zouden zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid de vrouwen verklaarden verder dat ze verder gedwongen om de om als prostitute उसे के सो बार बोले 6000 डाला तो भरिए अब जाओ कमाई कमाई हम में भरो तो ये बात है तो कुमार शानू कासिनो के बाद चीज करे है कि अब देखो क्या हो रहा है हमारे जब देखो भौजी के का भइल है हमारे प्यारी भौजी के का भइल है हां हवा पंप करे हार जेस तो बात ये हुए भैया भौजी के का भइल हमारे भौजी के कटली से दौड़ैले बाटे नानी ई चकल से देख हमार सुरीनाम में और एक मन फाल पार्टनर एंड कॉन्शियस भौजी के और पापा आन में कटली से भैया मारी से ओ तो के आईना फैला सब झाड़ के एकदम चक्का चूर कर दई से ये बात हुए भैया बनवारी स्त्रात है बुधवार के तो बतावे सरनाम में पार्टनर एंड हर्शियस और बोले हैगा अन अन गटली से के अनफाल करी से ओ तो फोटो तोड़ दे से हो टाइम के सिपाही एकर बारे में गइल है और पार्टनर अल 2 इयर्स सामन ऑफ एन एड्रेस वुंडन फॉर द फ्रॉ द मदर इज फ्रॉम बेबी तो ये सब बात है हमारे भौजी के सब कोई भौजी के देवे कुकू खाई के भौजी से प्यार करे है अई भौजी के कटली से गइला काटे आप लोग जानो है और ये हैगा यशरुन के बारे में सफीरा
Safira Yesru, maar ja, Amerika meer van de OAS top, top medewerker. Ik heb een diplomaten paspoort gebleken. En daar deze ga, Pontjik waren met Amerika diplomaten visum. Ik heb door haar Yesru ke Safira ingetrokken. En ik heb een langer rechtmatig feest met verblijf gekregen. Maar het Amerika mee, heb je Suriname, Chilië, he. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, bolle visum intrekkelijk he. Omdat Suriname ik heb strafrechtelijke onderzoek naar vermoedelijke corruptie tegen Yesru loop. Corruptie, bayaatje, Johan, zoenen. Thak gij die Suriname, bayaat, etana corruptie. Des waar kali corruptie se chale, bayaat, 1 ghanta hoeie hamara nieuws. हां 1 घंटा हो गए दा ये घंटा ये हो गए तब तो समझ गए ले क्या होने वाला है तो दोस्तों इसी प्रोग्राम से Never know, those never know. हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक चलते हैं मंगलवार को शाम को 6 बजे सब रविवार को दिन में 1 बजे हम हरहाल करते हैं जितने लोग हमारा फेसबुक पे है बहुत लोग है दोस्तों आप सबको हम बहुत-बहुत प्यार देते हैं यहां पे हैप्पी कलंग रहे हेमंत बुद्धू धर्मेन इसरी और दिखाए गए इरमा राम तहल सिंह राज राम लगन

हरिओम एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों पावन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरावा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पावन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादित्य भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोत आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का कार्यक्रम सरनामी संगीत और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो ये यशो उम्मीद लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। तो जहाँ प्रेमी जिस साल में हो घर पे हो या तो मोटरकार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं साथियों आप सभी को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत पहुंचे और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड हैप्पी हैप्पी संडे में ढेर फील लाइस्टर प्लेसीर के साथ पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस ब्लेसर या इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन एफएम चैनल पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान डॉक्टर फ्रेडा टेंस कंट्रोल व्यूर ऑफ द फोन टेलीफोन नंबर कंटोर न्यू सीखते 356-2016-4 स्टूडियो का तार का नंबर है न्यू सीखते 3-2016-2016-4 के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोगों के लिए भी चेंज करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो एनी टू फॉरगेट है ऑन सी क्वालिटी इज ऑलवेज यू करेंसी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूड से ऑलवेज लेकर दरबे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुने जो खास करके रोशिता बहन जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश की जिस तो सीता बहन जी आप सभी को सदियों से सेवा करती आ रही है ये ऐसा उम्मीद है कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद रोशिता बहन जी और आपको भी एक शुभ शाम शुभ रात्रि हैप्पी हैप्पी वीकेंड हैप्पी हैप्पी संडे फूल टीम की तरफ से। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है एक जश्न मनाया जा रहा है हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो विवाह संस्कार तो बीत चुका होगा ना कंगन भी छूट चुका होगा तो जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है औ परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है आप एक मातम में हो गमी में तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है औ परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए चंगा हो जाए बेहतर हो जाए ए नित फरखीत बंधु जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना और हो सके तो भी हम लोगों को भी सुनते रहना और हमारे और हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना फनहार्थ भी दर्शका आप कामयाब हो तुम्हारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां ए नदिल खासो दोर है फॉर ऑल मेटोटिव एंड मोहलिक सक्सेस बढ़ेगा बंधु और हो सकता है कि कल या परसों या आज आप कामयाब नहीं हुए हो तो मोर्ख इस वीर दिन पे दिन अपने आप पर
जरा और जोर जोर से विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ उतराओ अपने आप पर जोर जोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ और जोर जोर से कोशिश भी जारी रखना। तो हो सकता है कि कामयाबी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो नहीं तो खीफ है वो तो खलियत हैं तय समस्कोलो पिवेर ओवरऑल एंड ओवरऑल नेवर गिव अप ब्रदर नंगासीसा सोसो लोबी लोबी हम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बदांक फॉर हैट लुस्ट्रन इसमें प्रवेश हुए तुम्हारे फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम फेन वकांसी ब्लैक लेसर नार फा हम हिंदुस्तानी रेडियो यू गोन लाइक इट एंड दैट मीन अवे ओक। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं ओप सुकनारन अंदर प्लेक फैमिली बसुक वकांसी बसुक ओक ऑफ ओक एंड बीच अंदर काम फन द वारंथ ऑफ सुक है दिस दैट इज ओक मोगरक। तो आपको भी एक शुभ यात्रा। तमाम लोग सुनते हैं फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहर द्वारा, तो आप भी सुनिए हम लोगों को ओप यू टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप सो बेंट एंड ब्लेफ टू फन अलस ऑफ द वर्ल्ड फन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन इन देन हाग एंड नेचुरली दैट इज द वन एंड ओनली फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो 24 hours at your service, my guru. तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ है जो फिल्म ललकार 1920 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छगा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम तो और हमारे साथियों सभी आप सभी से हम लोग यहाँ से कहते रहते हैं ना कि हैव टू नाश्ता आउट एट लीफ हैं हम इंसान हैं कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक सरनामी संगीत। पहला अध्याय में कुछ बैठ है गाना दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट songs from the Bollywood film industry aur aaj ka I am the mood kuch Indian Hindustani reggae music lekar aaya hu last stage of this life lekar luister geniet ervan. Nederland speelt ook zijn eerste wedstrijd vanavond 10 uur tegen Japan dus met z'n allen staan we ook achter Oranje en natuurlijk namens van Hindustani Radio alle voet liefhebbers en fijne WK. Dus saathiyo, Rafi saab, sunate hai ki mil jul ke rehna chahiye na.

महान फनकार हमारे हॉलैंडीज का द किंग ऑफ बैठ गाना ढवाने डोंगरी मास्टरू संदीप बजलू जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं द किंग ऑफ बैठ गाना आप सुने तो अब लाते हैं आप श्रोताओं की सेवा में द लायन ऑफ बैठ गाना देन हाफ शेर का उस्तादों का उस्ताद देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी उनका बिल्कुल नया न्यू लाख जतन करी है।

शाबाश, न्यू बिल्कुल नया सॉन्ग उस्तादों का उस्ताद लैन ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह सिवनाज का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों। 5 मिनट बाकी है 5:30 बजने में रविवार का शाम का प्रोग्राम 15 यूनिट 20 सेशन 20 का यह सीन शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बड़े स्टूडियो से। अगला बयान ओपन हेल न्यू फंडेश यंग टैलेंट फॉल कलाकार हमारे देनहा शहर का मैस्त्रो शिवम राजाराम जी का इट इज एन हाफ मेटली कैसे टूटा और संया से भी छोड़ गए क्या बात है स्पेशल आप सभी प्रिय सुनने वालों के नाम

जवान कलाकार हमारे दनहाग शहर और इंडिया जो काफी नाम वर्ल्ड वाइड कमा चुका है, उनका बिल्कुल नया नया सॉन्ग न्यू न्यू कैसे टूटा और सैया से बिछोड़ मिक्स। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जून है साथियों, रविवार का शाम का प्रोग्राम जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है। एक मिनट व्यतीत हो चुका है 5:30। अगला बयान ऑल्सो न्यू न्यू न्यू ओक इंच फंद मैस्ट्रो नौजवान कलाकार नाड ग्रोथ सक्सेस फंद भैया ताके लड़की न्यू फंद विशाल हीरा जो धमाल मचा रहा है इस वक्त हमारे बैठक सीन के दुनिया में। हमारे रनिया स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम न्यू न्यू न्यू

शाबाश नौजवान कलाकार फ्रॉम द हीरा फैमिली इन तेलुगु एट द हीरा ब्रदर्स म्यूजिक फॉर्मेशन विशाल हीरा का बिल्कुल नया नया नया सॉन्ग। तो दोस्तों वक्त हो गया है ना वादा के मुताबिक कुछ ज्ञान के बातें हो जाए हमारे ज्ञान के जो इंतजार में रहते हैं कुछ ना कुछ ज्ञान के बातें सुनने को। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी लाइफ जीवन के बारे में इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों में हमेशा की तरह कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। कहकर गया है बहुत ही पुराने जमाने का विद्वान महाज्ञानी आदमी था है वॉज एन सीनेस फिलोसोफ हेट कॉन्फ्यूशियस एंड लिव्ड फ्रॉम 479 tot 551 voor Christus, hè? Bouti Purani Zamanika Admita, to kuch Dashia Gyara Zitat, Jeevan Leaf Zindagi ke baare mein kaha hai, to zara gaur farmaye. Arz kiya hai Sri Confucius ji ne ki, als je altijd gelukkig wil zijn, moet je vaak veranderen. जिंदगी के बारे में श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने की अल्स फ्रेंडन फन फेर वेग ऑफ बसुक कोमन इस दत्तन नित अनवार खनुखन द आनफूर्डर फन ग्रोट लेगर कान वर्सलागे वर्डन मार यू कैन द वसबरादेहेड फन एन पर्सोन नित लाते वंकलन। Iedere mens kan een zaak van alle kanten bekijken zonder vooroordelen. De kleine mens zit vol vooroordelen en kan een zaak maar van één kant bekijken. De wijze is vredelievend, maar kent geen compromissen. De gewone mens sluit compromissen, maar is nooit vredelievend. Alles stroomt als een rivier zonder te stoppen, dag en nacht. Iets leren en er in de loop van de tijd steeds vaardiger in worden, is dat ook niet een genot? Zeker. Om iemand te leren kennen, moet je met hem samenleven. Toespraken en een goed gekleed uiterlijk zijn zelden tekenen van menselijkheid. Vertel mij het verleden en ik zal de toekomst kennen. En de laatste van Confucius die luidt als volgt, Satyuki. Wie de kracht van woorden niet kent, kan ook geen mensen kennen. Toen je kuch gyan ke baate suni jo jeevan zindagi aur leef ke baare mein jata hai. Ye shamid lekar in baaton ko main aap sabhi ko sunaya ki in baaton se hamesha ki tarah kuch na kuch to hum log seekhte hi rahenge. Ramay ko badhata hoon saathiyon ghadi ki taraf dekhta hoon to tak करीबन 42 मिनट पास हो गया है 5 बजकर और आप सुन रहे हैं जोर तोर से हमारे सरनामी संगीत कुछ सरनाम देश के कलाकारों और कुछ हॉलैंड देश के कलाकारों अ मिक्स फ्रॉम उनसे एक संगीत बैठक गाना जिसपे हमारे हमें नाज है इससे तो हम लोगों का अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है ना। अगला बयान एक और नौजवान कलाकार है
जिसे मैं कल मिला एक जबरदस्त पार्टी में, ये चारों इतना मुझे इम्पोनियर किया, क्या बात है। और ये दो भाई है, रमन अंगनू और विराज अंगनू। विराज बड़कुआ है और ढोलकिया बजावे है, और रमन है छोटकुआ जो गावे है। और खुशी के बात ये है, ये दोनों मेरे बचपन का दोस्त विजय अंगनू जी का बेटा है, जो एक जबरदस्त ढोल मास्टर था यार। मैंने म्यूजिक फरमाशी सरंगा, जिसका बैंड लीडर था मास्टर रॉबी उदित राम, और उस जमाने में क्या ढोल बजाता था। आई वॉज पास फाइफ यार दी फादर फन विराज एंड रमन फॉर मास्टर विजय अग्नू। साहस चली गोरी पी के मिलन, गोरी बुलाए काशी देखी मथुरा है सोसमन। और कल जो मैं कल ये दोनों बेटे के का कमाल में देखा है, सवार ओक शाम में तो निशोन फान माएस्त्रो राजू शिव गुलाम ओक नहीं हुई फ्रिंद फमाई वेलन। तो ये चारों मिलके एना स्तुचार से मेघनो में जयंत महावीर ओक टैलेंटफुल सांगर। तो कुछ नगमे में सेलेक्ट किया है इन चारों का। विराज तो ढोल पे है, लेकिन ये तीनों को कमाल जरूर आप सुनिए। टैलेंटफुल आर्टिस्ट ओक है, एक सौ शेख हमारा सांडू भाई का 70वां साल का जन्मदिन था एक तवन में। इतना जबरदस्त ये लोग शो दिया वहां पर, हिला के धर दिया। एंड पौष माह कौकन पार निमर्श अपन ट्रैक सिंह एफ मसाड़ू भाई सुपर खुशहाल। तो जरूर सुनिए और दिल सेल्फ प्रोग्राम में मैं ला रहा हूँ एक जबरदस्त टैलेंटेड कलाकार रमन अग्नू, जिसका नाम है, कई बार मैं इनका नगमा भी चला चुका हूँ, लेकिन ओकन इंज दी हेल खुद इन अलकार दौर संब्रूर नतीलक एंड ससैन लीड फॉन म्यूजिक फरमासी द बैठक पावर ऑन द लाइन फॉन अमित शिव गुलाम नतीलक। मिलके सुनते हैं शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान, फूलों से तुम हंसना सीखो। हसोमदोर रमन अंगनू जी टैलेंटफुल आर्टिस्ट आशीर्वादनम बेटा।

शाबाश, क्या नगमा पेश किया, शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान की फूलों से तुम हंसना सीखे, एत सीतरा उस्ताद नौजवान कलाकार रमन अग्नू जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। स्पेल्ड कीबोर्ड बाजा एंड सिंथ फॉर म्यूजिक फरमासी बैठक पावर। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, 10 मिनट रह गया है साथियों 6 बजने में। जबरदस्त कलाकार, एक इससे भी मैं कल मिला और इतने गप्पे शप्पे हुए, हिला के धड़ दिए, तो मिल के सुनते हैं उस्ताद अमित शिव गुलाम जी को फ्रॉम द म्यूजिक फॉरमासी बैठक पावर ओक अन हेल न्यू फन हेम ट्वी दाख खलेड खलंसियर्ट तूने सावरिया।

Ikdam shabash shabash ustaduka ustade. Aur mahan funkar the great Raju Sri Gulam ji ka suputre. Aur mera bhi jabardast main inka fan hu aur kuch sunaya tha mujhe bhi kal. Kya baat hai, the one and only Amit Sri Gulam ji. तो आज का इस पहला अध्याय में जो सरनामी संगीत का आप सुन रहे हैं, बैठक गाना का प्रोग्राम लाइव आप सुन रहे हैं डायरेक्ट फ्रॉम देन हाग शहर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो से. अगला बयान और साथ ही साथ पहला अध्याय का आखिरी बयान होगा. जबरदस्त कलाकार उस्ताद जयंत महावीर जी सुनाते हैं बोल सोनी ओकलेट फन द बैठक पावर.

ऑन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम 14 जून 2026 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फोन टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसलो बिलो बी हम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलक बदंत फॉर हेड लाइस्ट्रेन। नौ मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:00 जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे, और हो सकता है कि आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक ऑर्गामान हो इवेंट और खनिशातर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर, और जितने बार आप कहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप श्रोताओं से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फमादाग तुत फ्रेदाग तेरेंस कांतोर उर अब दे फोल्कंदे टेलेफोन नुमर्स कांतोर 07-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना डेंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इमेंथन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए आप सभी को हमारे फुल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De gezellig bent u niet bieden keer jaar aan. Ik heb je geld Fahun Hindustani Radio kan member benen. Oh, ook op hier benen. Aap ko tot heer sare. Fajda hi, fajda hai. En recent hebben we ook onze eigen karaoke team van Fahun Hindustani Radio opgericht. Leuk clubje. Waar een paar omroepers en omroepsters live voor jullie binnenkort gaan zingen, hè? Volg onze omroepers en omroepsters en ook onze social media's. Dan hoort u zeer zeker wanneer wij binnenkort voor u live gaan optreden. En natuurlijk bent u dan ook van harte welkom. भी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहे हैं ना, आप भी आकर इसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें 07-365-2020

कुछ इंडियन पॉप म्यूजिक और एक जबरदस्त सॉन्ग में रख चुका हूँ, जबरदस्त गाने वाली द चटनी क्वीन फ्रॉम रॉटरडैम हॉलैंड, द वन एंड ओनली अश्नी माता दीन टुगेदर विथ फ्रॉम ट्रिनिदाद रेमंड रामनारायण मुरेगारी।

जमान सूरीनाम में त्रिनिदाद मशहूर गाने वाली अश्नी माता दीन टुगेदर विद रेमंड राम नारायण मोरी गारी। सुनो आज की इस हसीन रात्रि का प्रोग्राम में आप सुन रहे थे। अगला बयान की तरफ बढ़ते एक और जबरदस्त सॉन्ग है फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्माशी शो टाइम 2026 और सुनाने को जा रहे हैं एक वन लव मिक्स संदेशे शनिल मारियो एंड फेलरी डायरेक्ट फ्रॉम सूरीनाम।

Beautiful song from the music formation Showtime 2026. Aap sun rahe the die sundar bayan, gezongen door Shanil, Mario en Valerie. To dosto, agla bayan ki taraf badhte hai aur ghadi ki taraf dekhta hu to 4 minute reh gaya hai 6:30 bajne mein. रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जोर तोर से सरनामी संगीत, कुछ इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक. अगला बयान एक दारू मिक्स है और उसमें मिला दिया ताता तियो मैश. सुनने को जा रहे हैं नौजवान कलाकार शनील परन.

हॉलैंड सुरिनाम देश का एक नौजवान कलाकार देखा जाए तो सुनाया आप सभी को शनील परन जी का इतना पीप कर चीज हुआ यार आज फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं दूसरा अध्याय हमारी बैठक गाना तो आप सुन चुके हैं अब चल रहे हैं सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक तो अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है अनखोव ओव uit de jaren 90 en gezongen door onze welbekende Hollandse artiest, doorgebroken met de semi-klassieke groep Ishara met Silwake Mai en daarna voor heel veel bandjes gezongen zoals Indian Diamonds, Pandero, Mestana, noem maar op, heel veel concerten gegeven. The one and the only Indra Ramcharan, op zijn best voor die tijd, Dil Me Tujhe, beautiful song, special op zijn prie. श्रोताओं के नाम

Bonjour Gaik, hemare Hollandiska, geboren in Pakistan en al 42 jaar de leadzanger van muziekformatie The Strangers Orchestra, Bobby Jacob. साथियों वक्त हो गया है ना कुछ शायरी हो जाए वादा के मुताबिक, और इस बार शेष है कुछ जाम के बारे में, अरे कुछ मैखाने के बारे में। अर्ज किया है साथियों कि वो भी दिन थे जब हम भी पिया करते थे, वो भी दिन थे जब हम भी पिया करते थे। यूं ना करो हमसे पीने पिलाने की बात, जितने तुम्हारे जाम में है शराब, जितने तुम्हारे जाम में है शराब, उतने हम पैमाने में छोड़ दिया करते थे। बड़ी गौर से देख रहा हूं इस मैखाने को, इसने वक्त ही नहीं दिया और झुकाने को। मुझे मरने से डर नहीं लगता ऐ उमर, मुझे मरने से तो डर नहीं लगता ऐ मेरे उमर, बस शर्म सी आ रही है उसके पास जाने को। मैं तलाखिए हियात से घबरा के पी गया, गन की सियाह रात से घबरा के पी गया। इतनी दाकीक से कोई कैसे समझ सके, यजदान के वकीयत से घबरा के भी पी गया। वो भी दिन थे जब हम भी पिया करते थे, यूं ना करो हमसे पीने पिलाने की बात, जितनी तुम्हारे जाम में है शराब, उतनी हम मैखाने में अपने पैमाने में छोड़ जाते थे। गम इस कदर बढ़े के मैं घबरा के पी गया, इस दिल के बेबसी पे तरस खा के मैं पी गया। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहां को ठुकरा के खूब पी गया। सब कहते हैं कि बुरी है ये शराब, मैं भी माना कि ये शराब नशा चढ़ाती है। फिर पूछते हैं सब मुझसे कि क्यों पीते हूँ मैं, क्यों पीती हूँ मैं, तो क्या बताऊँ यारो, तो क्या बताऊँ यारो, ये शराब ही है, ये शराब ही है जो उनका गम भुलाने में काम आती है। तो ये था कुछ मैखाने और कुछ पैमाने और कुछ शराबियों के बारे में शेर शायरी। अगला बयान एक जबरदस्त गायक है हमारे हॉलैंडिस का, मैस्त्रो किरण केरार फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी द बैंड दुनिया।

यावान दैट वाज इट किरण केदार रेड्डी के ब्यूटीफुल आवाज में यह अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोज बाय सेलेक्टा बीट्स। 9 मिनट रह गया है 7 बजने में। साथियों अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है जो मेरा जिगरी दोस्त ने री अरेंजमेंट किया है खास करके मेरे ही खातिर, और ये भाई मैं सुनाता हूँ आप सभी को दादा हेमंत कुमार के याद में मेरे ही आवाज में। सुरेन भगवान दीन और अशोक अयोध्या ने मिलकर ये नगमा को तैयार किया है, और सुनील खसौद और दादा हेमंत कुमार।

Beautiful song rearrangement by Jigri Dost, maestro Ashok Ayodhya, origineel gezongen door Dada Hemant Kumar. Aur abhi to aap mera hi awaaz mein, yani aapki khidmatgar ki awaaz mein suna. साथियों, आज का इस हसीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम एक आखिरी बयान आप सुनेंगे, और ये भी कुछ क्लेन वॉशेस और ख्रूत वॉशेस के बारे में जाता है। इस सभी तो वास्क्रोसी दाय पौधे जी वॉशेस अपार दाय पौधे बिगी वॉशेस अपार ये वही थू का तौक ब्लैक पैंथर एनएल रिमिक्स वन क्लेन वॉशेस ख्रूत वॉशेस।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों तो 6 मिनट गुजर चुका है 7 बजकर। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाथ्रिलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाथ्रिलिक बदंत फॉर हेट लाइसरन। तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइशें जरूरी खबरें इश्तिहारे या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में या तो एक ऑर्गमान हो इवेंट और हनिसात और हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमेश्वर बनवा कर और फाहन हिंदुस्तानी जो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना साथियों तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी क्वालिटी स्टार्ट बियॉन्ड ऑफ द ईस्ट प्लांट्स। हम लोग मार्ग पर आपका जो भी रेडियो का संदेश है ना बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ साथियों की फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हर एंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 7 3 5 6 2 2 7 4 कमतौर का नंबर और स्टूडियो का तार का नंबर है 9 7 3 2 6 2 7 7। जो भी रेडियो का काम होना खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे देंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आप सभी को तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है एंड रिसेंट है वो एक कराओके टीम फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो ओक अपग्रेड अंडर लीडिंग फन The one and only maestro, Ustado ka Ustad, Chandrasen Gangaji, the ons here on het opleiders met heel veel zangers en zangeressen, waaronder ook omroepers en omroepsters van Fahun Hindustani Radio ook meedoen. Dus volg ons social media van de omroepers en ook van onze karaoke groep. Dan ziet u of hoort u heel gauw waar we binnenkort voor u gaan optreden. En dan bent u ook van harte welkom, hè. To abhi is chota sa, mota sa, jo faun hindustani radio ka parivar banti ja rahe hai. Aap bhi aakar usme shamil ho jaye. सभी जानकारी इसके बारे में आप तैयार करें अपने 7 3 5 6 2 2 7 4 एंड फ्राग नार ऑनसे टीम लीडर द वन एंड ओनली माएस्ट्रो जॉनी नंबर वन। तो वारा के मुताबिक कुछ अलग स्टाइल के नगमे में आप सभी से प्रॉमिस किया था चलाने को तो एक रख चुका हूं प्लेयर में सुनाने के लिए। चले तो कटी जाएगे ये सफर एन ब्यूटिफुल नंबर रिसेंट गलांसेर्ड ओल्ड बॉलीवुड गजल स्टाइल मार इन ए न्यू यश न्यू फैशन मिलके सुनते हैं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना, मैं क्या बताऊं। एक से एक नए नए सॉन्ग्स आज के ससी रात्रि के लिए मैं सेलेक्ट किया हूं, कुछ अलग स्टाइल के नगमे जो काफी दिनों बाद आप सुन रहे हैं। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं, ऐसे ना मुझे तुम देखो, इट्स रेगे फंकी रीमिक्स डायरेक्ट फ्रॉम कलकत्ता।

Beautiful song, wonderful song, een funky remix. Aisena, Tum Mujhe Dekho. Bollywood reggae music. 8 मिनट बाकी है साथियों, 7:30 बजने में. और इसी तरह के कुछ संगीत चुना हूँ आज के इस हसीन रात्रि के प्रोग्राम में. अगला बयान कुछ कुछ होता है अन आई रेगे फैशन स्टाइल. एंजॉय द म्यूजिक मान.

क्या बात है, रब ने बना दी जोड़ी इन मोय रेगे यश खिस्तुक। तो दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ अलग स्टाइल का म्यूजिक मैं आज सेलेक्ट किया हूँ आज के इस हसीन रात्रि के कार्यक्रम के लिए। वक्त हो गया है कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना आज के मेरे शेयर्स के चाहने वालों के लिए, और ये भी आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। हमेशा याद आती है उनकी, हमेशा याद आती है उनकी, और मूड हो जाता है खराब, तब हमेशा लेकर बैठे हैं हम एक हाथ में कलम और एक हाथ में जाम। खाली है अभी जाम में कुछ सोच रहा हूँ, खाली है अभी जाम मैं कुछ सोच रहा हूँ, ऐ गर्दिशे अय्याम मैं कुछ सोच रहा हूँ, साकी सागर को जरा थाम मैं कुछ सोच रहा हूँ। काश हमें भी कोई समझाने वाला होता, काश हमें भी कोई समझाने वाला होता, तो आज हम इतने ना समझ ना होते, काश कोई इश्क का जाम पिलाने वाला होता, काश कोई इश्क का जाम पिलाने वाला होता, तो आज भी इश्क शराब के दीवाने में ना होते। हर किसी के बात का कोई जवाब नहीं होता, हर नाम इश्क में खराब भी नहीं होता, यूं तो झूम लेते हैं नशे में रहने वाले, यूं तो झूम लेते हैं नशे में रहने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। लफ्जों के फसाने ढूंढते हैं हम लोग, लम्हों में जमाने ढूंढते हैं हम लोग, तू शहर ही दे शराब के कर साकी, तू जहर ही दे शराब कहकर साकी, पीने के बहाने ढूंढते हैं हम लोग। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, यारो वो भी दिन थे जब हम भी पिया करते थे, यू ना करो हमसे पीने पिलाने की बात, जितनी तुम्हारे जाम में है शराब उतनी हम पैमाने में छोड़ दिया करते थे। तो ये थे कुछ आखिरी शेर्स, अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ब्यूटीफुल सॉन्ग ओरिजिनल ज़ोमदोर महेंद्र कपूर जी, मगर इट इज एन मोय रेगे वर्जन, धुन बनाए हैं ओरिजिनल महान संगीतकार रवि शर्मा जी, और अल्फाज़े है द ग्रेट साहिर लुधियानवी जी का। नीले गगन के तले

हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मशहूर अनाउंसर साथी और हम लोगों का महा महा गुरु डवाने डवली मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा जी का जन्मदिन है। तो इसी खुशी मौके पर हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्ट सिलेड आलमीद वर्कर्स की तरफ से श्रीमान चंद्रसेन गंगा जी को तहे दिल से बधाइयाँ ही बधाइयाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर बिंदी दुआ करते हैं कि हमारा उम्र भी आपको लग जाए भाई। और इसी खुशी के मौके पर ये अति सुंदर बयान उस्ताद का उस्ताद क्रिश राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज में सुनिए और एंजॉय कीजिए। जन्मदिन पर तेरा हम जरूर नाचेंगे ना।

भाई मेरे बड़े भाई, इसी खुशी मौके पर जैसे आप लोगों के मालूम है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त महान अनाउंसर साथी हम लोगों का बड़का भैया द वन एंड ओनली मैस्ट्रो चंद्र सेन गंगा इस यारख, तो इसी खुशी के मौके पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर अलमेद वर्कर्स कोलेगास और सभी कर्मचारियों की तरफ से भाई चंद्र सेन गंगा जी को तहदिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि हम लोगों का उम्र भी हमारे बड़का भैया हम लोगों का उस्ताद हम लोगों का महा महा गुरु को लग जाए। 8 मिनट रह गया है साथियों 8 बजने में, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का महान अनाउंसर साथी मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा जी का जन्मदिन हम लोग मिलकर मनाते हैं। तो हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्टर मेड वर्कर्स कोलेगास की तरफ से भाई गंगा जी को तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है ये अति सुंदर बयान के साथ इट्स ट्विस्ट फैशन बर्थडे सॉन्ग।

हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू उंस बड़का भैया मैस्त्रो चंद्र सेन गंगा इस यार तो इसी खुशी के मौके पर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्टर अलमेड वर्कर्स ओमरूपर्स एन नास्त भाई गंगा जी को तय दिल से बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे।

तो साथियों यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। हमारी बात आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है कोलिखा महान अनाउंसर साथी भाई राजन द्वारका जी। जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, मुझे आप सभी इजाजत दे। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल ओट इज गोल्ड। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ साथियों, आदत से जो मजबूर हो गया हूँ ना। आज मैं आप सभी को एक ऐसा नगमा सुनाने वाला हूँ जो मेरे दिल के करीब है। इस न्यू इन द मार्क मुझे ये गाना कल गाना पड़ेगा और चाहे गावे के भाई अशोक के स्टूडियो में है मिशिक आल ग्लार एन इखा प्रोबेरेंस टू कियर फुली द सिंगन कैगर विद हार्ट बीच फ्री एन Gunst werk gaat het wel lukken. Heb ik een studio? De muziek al klaar en ik ga proberen een stukje voor je. En Gunst werk gaat het wel lukken. Heb ik een studio?

I love you all from the bottom of my heart. और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार 8 बजे रात्रि में मैं हाजिर हो जाऊंगा आपसे के खिदमत में. So, so lobby lobby and blessings to all of you and bedankt voor het luisteren. Bye.

प्रारंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज शाम के प्रोग्राम में बप्पी लहरी द ब्लिंग ब्लिंग सांगर म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसेंट भारत का आलोक्स अपरेश लहरी, उसका असली नाम यही है दोस्तों। 20 नवंबर 1923 में पैदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लोग बपीता के नाम से जानते पहचानते हैं, पप्पी लहरी के नाम से लोग भी उन्हें पुकारते हैं। वो एक सांगर था, कंपोनिस्ट प्रोड्यूसर प्लाट प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह। पॉपुलर था 1980 में बंगाल तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों में। पिता अपेश लहरी और माँ बंसूरी लहरी, ये दोनों सांगर और म्यूजिकांत थे। बप्पी या मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग माता पिता का एक ही लड़का था, एक ही बेटा था, और 19 साल के उम्र में इन्हें उनका मामा जी या मामू श्रीमान किशोर कुमार, मशहूर गायक किशोर कुमार, बॉम्बे ले गया। पहला हिंदी फिल्म जहां पर वो म्यूजिक कंपोज किया वो था नन्हा शिकारी जो नी हंटिंग ड्रियन सी फिल्म तक में बना, और पहला म्यूजिक कंपोजिशन उसका था तुम ही मेरा चंदा, ये गीत माइटी मुकेश ने गाया और सुलोचना पंडित के साथ भी जाना कहा है ये सॉन्ग पेश किया। मैं आप सभी के सेवा में ये सॉन्ग पेश करता हूँ, बप्पी लहरी एंड सुलोचना पंडित।

of disco, disco की बपीता या बप्पी लहरी मिथुन को बहुत से मदद किया फिल्मों में दोस्तों। बात यह है कि मिथुन का बीबी योगिता बाली वो चला गया, नहीं नहीं किशोर कुमार का बीबी योगिता बाली वो चला गया मिथुन के साथ, तो किशोर कुमार ने बंद कर दिया मिथुन के लिए गीत गाने को। तो बबीता ने मिथुन को बहुत से मदद किया, जब मिथुन तब पे आया था ये बबीता का कारण हुआ। और फिल्म डिस्को सिंगर डांसर आपको मालूम होगा दोस्तों, ये फिल्म आपने जरूर देखे होंगे। उस समय डिस्को का समय रहा और हर एक गीत जो डिस्को से चलते थे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते थे। मैं पेश करूँगा डिस्को डांसर का सॉन्ग आई एम ए डिस्को डांसर, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी।

तर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी का एक दूसरा गीत है, बम्बई से आया मेरे दोस्त आपकी खातिर फिल्म का नाम है, जिसमें विनोद खन्ना और रेखा ने काम किया। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी की आवाज में आप

मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के घर पर इनकम टैक्स वाला छापा मारा दोस्तों, और उनका इतना सोना है सब इकट्ठा करके तौला तो लगभग 2 किलो का सोना उसके पास। लेकिन हकीकत में लोग कहता है कि बप्पी लहरी के पास और सोना है, लगभग 4 किलो का सोना उसके पास है। बप्पी लहरी मिस्टर बबीता फिल्म डिस्को डांसर का एक सॉन्ग है जिसमें बप्पी लहरी ने म्यूजिक डायरेक्ट किया। जिमी जिमी आजा आजा आजा

फिल्म डिस्को डांसर का एक दूसरा सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। गायक है पप्पी लहरी और म्यूजिक भी डायरेक्ट किया है पप्पी लहरी। याद आ रहा है तेरा प्यार कहा हम कहा, पप्पी लहरी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

पपी लहरी पपीरा के नाम से भी लोग जानते पहचानते थे मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग। जब पप्पी जी कहीं लाइव शो पे जाते थे तो हमेशा सबसे बेस्ट सांगर या सांगरस को जेबी में अपन गटे में से एक माफ कीजिए मैंने कहा जेबी अपन गटे में से एक चेन एक केटी निकाल कर और तोहफा देता था। ये काम करता था मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग पपीता। पप्पी लहरी का एक दूसरा सॉन्ग है आशा के साथ, यार बिना चैन कहा रे।

लहड़ी निकली ड्रीम तक तक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का प्राइज पाया फिल्म शराबी में उसके बाद नहीं थी इन्हें नहीं खन तक और तुए जैसे तारक में भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ पप्पी लहड़ी। अमित कुमार और एस जानकी के आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे जिसका कंपोजर है, इस गीत का कंपोजर है मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग।

सितारों का सफर आप सुन रहे बप्पी लहरी। बप्पी लहरी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उसके बप्पी लहरी का एक रिकॉर्ड भी उसके पास है, 12 सुपर हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया जितेंद्रा का फिल्म में। नहीं सेशन तक के बाद जब उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम आया, इसलिए कि 180 नंबर्स एक साल के बीच में 180 नंबर्स ये पेश किया। और दुख की बात यह है दोस्तों कि बप्पी लहरी का मृत्यु 15 फरवरी 2020 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ।

सितारों का सफर यहां से समाप्त होता है। आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

सोनी मेरी सोनी सोनी, एक दूसरा सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सॉन्ग है दोस्तों। और ये गीत, ये फिल्म शूटिंग, इसका शूटिंग हुआ है हरियाणा, इंडिया का एक गांव है, एक शहर है हरियाणा। वहाँ पर शूटिंग के समय जब शाहरुख खान काजल शुरुआत किया इस गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये गीत का शूटिंग के समय वहाँ गांव के लोग, वहाँ के जो बसिंदा थे सब आकर घेर लिया और हल्ला मचाया, शोर मचाने लगा। तो जो वहाँ का फिल्म डायरेक्टर था उसको प्रॉब्लम था, वो ये शूटिंग नहीं कर सकता था। तो आमने सामने बैठा था फिरोज खान, मशहूर एक्टर फिरोज खान वहाँ शूटिंग के जगह पर भी बैठा था। तो ये उठ के गया है और ये हरियाणी, ये हरियाणा का लोग जो है उस सभी से हरियाणी भाषा में बात किया, सभी को भाई बनाया। तो जाकर शाहरुख खान और काजल ने ये गीत को प्लेबैक किया, तुझे देखा तो जाना सनम।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला दर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले माइटी मुकेश।

0: क्या हुआ तेरे और अदर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला चूं।
0: फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 4 से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: रहे ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमी है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 अक्टूबर 1928 को लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर का की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुए। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह तख्तक में बनी थी, और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी शास्त्रक में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नत के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निखिल फिरन तख्तक में बना था, वो स्टेफन स्पीकलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी नहीं स्टीफन फेस्टिक में अर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। नेगनन सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग, दोस्तों एक ओल्ड सॉन्ग है, और इसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कन्नड़ा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयामी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपर्त आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उसमें उफन करते थे। अमरीश पुरी वैसे तो कई अवार्ड भी पाया, निधि अख्तन शास्त्रक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

1979 में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद 1986 तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में 1991 महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। 1989 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में 1993 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में 1999 के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में 1999 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी इर्मिला देविकार और बेटी राजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है, लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाई और बहनो,
1: हाय हाय सुनो सुनो भाई बहनो,
0: सिंगर, जनरल सिंगर, अरे तुझे भी सुनो पापे।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। हर एक काम जो आपके रेडियो के सिरे कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से, या चले आइए दफ्तर पर, खुला रहता है दोस्तों रोजाना। और आपको मानना चाहिए खास फरमाए जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह आपके पास है तो आप शौक से चले आइए फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो के पास। पिया तू अब तो आजा, आशा भोसले अरदीप बर्मन का म्यूजिक है। और जब ऐसा गीत है दोस्तों पिया तू अब तो आजा, तो कौन हो सकता है जो ये गीत को एक्ट किया होगा? हेलन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। हेलन, जितेंद्र, आशा परेख, ये सब ही काम किया फिल्म कारवा निहरी इन सीफन तक का फिल्म है। इसी फिल्म का सॉन्ग आशा भोसले के आवाज़ में आप सुनेंगे।

आजा पिया अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और रजिश खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख रजिश खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कटी पतंग।

0: eigenlijk?
1: 1969 के बाद, आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बड़ा सानी भी इस फिल्म में काम किया, और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्रा और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि, और आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि, और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में निखिल शास्त्र के बात है, जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झूमका।

जो मैंने चॉइस करके रखा उस फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे, राफी साहब एंड नाइटिंगेल, लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाजों में।

आया साउंड झूम के बाद दोस्तों, अब की बार उन दिनों के बाद है कपूर परिवार का सबसे हैंडसम बॉय शशि कपूर का फिल्म आमने सामने का एक सॉन्ग है, नहीं मिला के चैन चुराना किसका है ये काम। शशि कपूर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया दोस्तों, और शशि भी शर्मिला के साथ और कई फिल्म बनाया, बड़े बड़े फिल्में जैसे सुहाना सफ़र, माई लव, अनहारी वगैरह वगैरह। तो हम सब मिलकर सुनेंगे नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है वो काम, मुझको पता है उस जालिम का नाम।

यह आपको भी पता है उस आलम का नाम, मैं सोचा जरूर पता होगा। दोस्तों मस्त बहारों का मैं आशिक, फिल्म फर्ज, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे। उन दिनों में ये फिल्म कितना हलचल मचाया और जितेंद्रा फिल्म में काम किया बबीता के साथ। दोस्तों बीते हुए दिनों में एक बात थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म एक्टर्स जब शुरुआत करते थे तब फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर का फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, उसके बाद टॉप एक्टर बन जाते थे। उसी तरह से एक एक्टर भी जितेंद्रा है या था जो जिनका एक दो फिल्म फ्लॉप हुआ फिर जाकर एक टॉप एक्टर बना। तो माइटी मुकेश नहीं है, मैंने सोचा माइटी मुकेश नहीं, राफी साहेब वंस अगेन, मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्रा एंड बबीता का फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग।

ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, बदले दुनिया सारी, बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना। दोस्तों फिल्म गाइड, इस फिल्म में देवानंद एक गाइड था, हिट्स था, रेस हिट्स, और एक सॉन्ग है जिसने शैलेंद्रा ने लिखा है। शैलेंद्रा का असली नाम है शंकर दास केसरी लाल होना चाहिए, शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्रा का असली नाम है। आप जानते दोस्तों, एक गाना जब एक गीत जब बनता है तो लोग गाते हैं, हम हमेशा कहते हैं राफी ने अच्छा गाया, मुकेश अच्छा गाया, लता ने अच्छा गाया, किशोर कुमार ने गीत अच्छा से गाया, लिखी वो शख्स जो एक गीत लिखता है उसका नाम हम नहीं लेते हैं। वो आदमी जो बैठ कर सोच सोच के दिन रात एक गीत लिखते, उन्हें हम भूल जाते हैं, ऐसा मत होना चाहिए। शैलेंद्रा का लिखा हुआ गीत है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, किशोरदा एंड लता।

मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत से एक्टर्स का फिल्म फ्लॉप हुआ है और सलमान खान का भी 2-3 फिल्म लगातार फ्लॉप हुआ। तो एक रात्रि में लगभग आधे रात को सलमान खान गोविंदा को तार किया। उन दिन गोविंदा उनका दोस्त है, तो उसे कहा कि मैं अब स्टॉप करूँगा, फिल्म फ्लॉप हो जाता, अच्छा नहीं लगता है। तो गोविंदा सलमान खान का हाथ पकड़ा, उन्हें मदद किया दोस्तों। तो सलमान खान आज इतना बड़ा एक्टर है। सलमान खान का एक फिल्म है लकी, और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है सोनू अतनान सानी, दोनों की आवाज़ में सुन जरा।

सुन जरा सुनिए सुन जरा, इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, लॉकी नो टाइम फॉर लव फिल्म का नाम, अनुराधा एंड उदित नारायण।

होगा क्या लव सॉन्ग, जा मेरी जा रही है सनम। एक दूसरा लव सॉन्ग है दोस्तों, शाहरुख खान एंड यूही चावला ने काम किया फिल्म यस बॉस, 1970 सॉन्ग है और ये गीत मैं कोई ऐसा गीत गाओ आप सभी के लिए है।

कंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हम लोगों का जो एयर वार द कोलीखा द वन एंड ओनली भैया चंद्रसेन गंगा जी का जन्मदिन है, तो इसी खुशी के उपलक्ष्य में हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी मीडिया वर्कर्स, खास करके डायरेक्ट लीडर मीडिया वर्कर्स ओम रूपर्स अल कोलीखास की तरफ से भाई गंगा जी को तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश करते हैं और ऊपर वाले से विनती करते हैं कि हम लोगों के बीच ये महान उस्ताद 100 साल से ऊपर तक जिए और अच्छी तंदुरुस्ती के साथ। नामस अल कोलीखास फ्रेंड फैमिली फन हार्टिक फेलिसिटेट भाई गंगा जी en we houden zoveel van u dat wij u boven de 100 jaren met ons samen willen zien genieten, vooral zingen, fun maken, omroepen. U bent een groot voorbeeld van ons en natuurlijk ook onze master, onze guru bij karaoke en ook met live optredens. We zijn u reuze dankbaar. En ook nogmaals van harte gefeliciteerd. Happy happy birthday song by Sonu Nigam ji, speciaal voor u namens al uw dierbaren. Hari Om. God bless you, bhai. So lobby lobby and blessing to aapko. Aapke charno mein hum sab सर नवाते हैं महा महा गुरु वत्सय मई सुपर थ्रोट्स ऑफ यू दैट ही नॉट स्टेट्स द लीफ्टेड नीट फॉर क्लापर मा दैट साल यू मार एंड गेट योरसेल्फ मूट टू डू एंड दैट यू नॉट स्टेट्स बाप रे बाप सो परफेक्ट नॉट सिंग्ड हैं वत्स एन गॉड रेज़ डंगबार मेट यू हरि ओम एंड बाय दिस bij deze, ik heb echt geen woorden hoor, maar ik bedoel, ik stotter, ik tot lava, ik bedoel, het komt rechtstreeks uit mijn hart en ook namens alle collega's. Happy happy birthday to you, by Sonu Nigam.

हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मशहूर अनाउंसर साथी और हम लोगों का महा महा गुरु दवाने डोंगरी मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा जी का जन्मदिन है। तो इसी खुशी मौके पर हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्ट से लीड आलमीद वर्कर्स की तरफ से श्रीमान चंद्रसेन गंगा जी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर बिंदी दुआ करते हैं कि हमारा उम्र भी आपको लग जाए भाई। और इसी खुशी के मौके पर ये अति सुंदर बयान उस्ताद का उस्ताद क्रीश राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज में सुनिए और एंजॉय कीजिए। जन्मदिन पर तेरा हम जरूर नाचेंगे ना।

मेरे बड़े भाई, इसी खुशी मौके पर जैसे आप लोगों के मालूम है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त महान अनाउंसर साथी हम लोगों का बड़का भैया द वन एंड ओनली मैस्टर चंद्र सेन गंगा इस यारख, तो इसी खुशी के मौके पर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर अलमेड वर्कर्स कोलेगास और सभी कर्मचारियों की तरफ से भाई चंद्र सेन गंगा जी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि हम लोगों का उम्र भी हमारे बड़का भैया हम लोगों का उस्ताद हम लोगों का महा महा गुरु को लग जाए। 8 मिनट रह गया है साथियों 8 बजने में, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का महान अनाउंसर साथी मैस्त्रो चंद्र सेन गंगा जी का जन्मदिन हम लोग मिलकर मनाते हैं, तो हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्टर मीड वर्कर्स कोलेगास की तरफ से भाई गंगा जी को तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है ये अति सुंदर बयान के साथ, इट्स ट्विस्ट फैशन बर्थडे सॉन्ग।

हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू हंस बड़का भैया मैस्त्रो चंद्र सेन गंगा इस यार तो इसी खुशी के मौके पर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्टर अलमेड वर्कर्स ओमरूपर्स एन नास्त भाई गंगा जी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन आयुमान प्रश्नेटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था, जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछे भी हो सकती हैं सुनने वालों। समूची मूछ, शुभ, धन, धान्य, दूध, दही, सवारी, ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ, विजय, बायां भाग कहा सुनी, झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है सुनने वालों।

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन, लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले, कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले, कंठ का ऊपरी भाग स्वर्ण माल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग दुर्भाग्य है, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वस्थ प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गयाना के प्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाप कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्याओं को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 मास से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 मास से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10-11-12-13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो, तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: जो ज्ञान दान कहलाता है।
1: नमस्कार सबको। थोड़ा सा विलंब होने के कारण यहाँ पे काम तो चल ही रहा है। संजय जी बड़ा अच्छे से किए हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। को अपना कार्यक्रम लेके बबली जी ने जो बढ़ाया उसको आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को करेंगे। संजय जी ने बहुत ही अच्छे सुरों में अपना रखा और अब हमको चाहे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 16 महादान, जो दान है उनके भी महादान वो 16 प्रकार से रहते हैं। तो वो 16 प्रकार के जो महादान हैं कुछ बबली जी ने आपको बताए होंगे, आप जाने होंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ तुलादान की तरफ। तुलादान या तुला पुरुष दान, इसका मतलब है कि हिरण्यगर्भ दान, ब्रह्मांड दान, कल्प वृक्ष दान, गोशैर्ष दान, हिरण्यकाम धेनु दान, हिरण्याश्रु दान, हिरण्यस्वरथ दान, हेमहस्तिरथ दान, दान पंचलांकक दान, धरा दान, विश्वचक्र दान और कल्पता दान, सप्तसागर दान, रत्न धेनु दान तथा महाभूत दान। ये दान सामान्य दान नहीं है अपितु सर्वश्रेष्ठ दान है। ये सभी दान सामान्य आर्थिक स्थिति वालों के लिए संभव नहीं है। इनमें से एक भी दान यदि किसी के द्वारा संपन्न हो जाए तो उसका जीवन ही सफल हो जाता है। जो निष्काम भाव से इन 16 महादानों को करता है उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। तुला दान या तुला पुरुष दान, इसके बारे में समझते हैं कि तुला दान और तुला पुरुष दान क्या होता है। 16 महादानों में पहला महादान तुला दान या तुला पुरुष दान है। तुला दान अत्यंत पौराणिक काल से प्रचलन में है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने तुला दान किया था, उसके बाद राजा अम्बरीश, परशुराम जी, भक्त प्रहलाद आदि इसे किया। कलिकाल में यह तुलादान प्रायः काफ़ी प्रचलन में है। कलिकाल में बहुत लोग तुलादान करते हैं और अभी बहुत प्रचलन में चल रहा है। इसमें तुला की एक और तुलादान करने वाला तथा दूसरी ओर दाता के भार के बराबर की वस्तु तोलकर ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तो हॉलैंड में करते हैं तुलादान।
2: राजेंद्र जी, इसके तो मैं ये वृतांत को तो मैं पहला बार सुन रहा हूँ और जरूर कुछ होता होगा यहाँ पर तुला दान के अंतर्गत। पर जैसे कि मैं गत दिनों सुना कि लोग दान के लिए यहाँ से भारत जाते हैं भंडारा कराने के लिए और 700-800 लोगों के, तो ये भी उसमें से एक चीज है, ये समझने वाला बात हो जाता है।
1: हाँ, तो इसको हम समझा देते हैं कि तुला दान का क्या महत्व है। तुला दान का मतलब होता है कि एक तरफ जैसे कोई बच्चा होता है उसमें ब्राह्मण कहते हैं कि किसी का ग्रह भारी है तो तुला दान कर दो, मतलब एक तरफ उसको रख दो, व्यक्ति को रख दो, और दूसरी तरफ उसके बराबर अन्न रख दो, चावल या दाल या गुड़ या कुछ भी कुछ चीज़ जो दान वाली चीज़ है, आटा या कुछ भी चीज़, अन्न के बराबर अन्न दान। तो राजा महाराजा लोग तो स्वर्ण दान किया करते थे, एक तरफ सोना रखते थे, दूसरा तरफ मनुष्य को रखते थे, बराबर तोल के दे देते थे। तुला तराजू के बराबर तोल के ब्राह्मण को दिया जाता है।
2: ऐसा
1: तो आप लोग तो ब्राह्मण हैं, आप लोगों, मुझे तो लगा कि आपको मिला होगा कहीं तुला दान स्वर्ण का। तुला दान के बारे में बहुत ही अच्छा लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी और जिनका कुछ कष्ट रहा या उनके तुला दान करने से वो सब दूर हो जाता है।
2: पर भारत में ऐसा होता है?
1: हाँ, भारत में तो बराबर होता है,
2: खूब होता है। तो क्यों ना हम एक गीत की ओर चलते हैं राजेंद्र जी, और गीत के बाद हम सब फिर ये कार्यक्रम को बढ़ाने वाले हैं।
1: जी जरूर।

0: बहुत ही सुंदर जो नगमा था, शंकरा रे शंकरा, सबने बड़े ही प्रेम से सुना होगा और उसका लुत्फ भी उठाया होगा। बात चल रही थी तुलादान की, तो तुलादान का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए तुलादान में इंद्रादि 8 लोकपालों का विशेष पूजन होता है। तुलादान करने वाला अंजलि में पुष्प लेकर तुला की 3 परिक्रमा इन मंत्रों का उच्चारण करके करता है। नमस्ते सर्वभूतानां साक्षीभूते सनातनी पिता महीन देवी तम निर्मिता परमेष्ठिना त्वाधृता जगत सर्वं सैस्त्वास जगत्गणं सर्वभूतात्मभूतेस्ते नमस्ते विश्वधारिणी। ये मंत्र होने चाहिए। हे तुले, तुम पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुई हो। तुम्हारे एक पलड़े पर सभी सत्य है और दूसरे पलड़े पर सौ असत्य है। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई है। मुझे तोलती हुई तुम इस संसार से मेरा उद्धार कर दो। तुला पुरुष नामधारी गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर दानदाता तुला के एक तरफ बैठ जाए और ब्राह्मण गण तुला के दूसरे पलड़े पर दान की जाने वाली वस्तु को तब तक रखते जाए जब तक कि तराजू का पलड़ा भूमि को स्पर्श न कर ले। आप समझे कैसा?
1: भूमि का
0: तराजू का 2 पलड़े होते हैं ना, तराजू के 2 पलड़े होते हैं।
1: तराजू कहते हैं जो, जैसे कि सन्नाम में हम लोगों ने
0: तोलने वाला
1: हाँ। आजकल तो डिजिटल हो गया है, पर
0: पहले

0: में रखने से दानदाता को भय, व्याधि तथा शोक की प्राप्ति होती है। शीघ्र ही दान दे देने से मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
1: उत्तम फल को प्राप्ति होती
0: है। हाँ, उत्तम फल की प्राप्ति
1: होती है। यानी कि कुछ करो, मन में इच्छा रखो तो उसे एकदम एकदम पूरा कर दो।
0: हाँ,
1: पूरा कर देना चाहिए।
0: अब ये समझने की बात है कि किन किन वस्तुओं का तुलादान हो सकता है। प्राचीन समय में मनुष्य के शरीर के भार के बराबर स्वर्ण तोला जाता था, सोना।
1: सोना का, जैसे कृष्ण भगवान वाला।
0: हाँ, किंतु कलयुग का स्वर्ण अन्न है। लेकिन आजकल तो स्वर्ण तो इतना कोई नहीं दे सकता है, अन्न देते हैं। अन्न में कलयुग में स्वर्ण के स्थान पर सप्त धान्य या अन्न से तोला जाता है। सात धान्य होते हैं।
1: सात प्रकार का जो दाल होता है।
0: नहीं, दाल नहीं, धान।
1: ओ, सप्त धान्य।
0: सप्त धान्य,
1: जैसे कि गेहूं,
0: चावल,
1: चावल, जौ, आटा, ऐसा बाजरा।
0: हाँ, ये सब चीजें। रोगों की शांति के लिए भगवान मृत्युंजय को प्रसन्न करने के लिए लोहे से तुलादान किया जाता है। अगर कोई बीमार है तो एक तरफ लोहा चाहे रखे, दूसरी तरफ मनुष्य, तो उसके बराबर दे दे तो वो रोग दूर हो जाते हैं। और कामनाएं हैं तो उनकी पूर्ति करने के लिए, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने के लिए रत्न है, चांदी है, लोहा। चांदी तो मैंने देखा, अभी देते हैं लोग। चांदी तो सस्ता है ना।
1: ऐसा
0: चांदी ज़्यादा महंगा ना रहा
1: यहाँ ना मारा।
0: 45-50 हज़ार रुपये किलो।
1: अच्छा,
0: यानी 700
2: लोग देते,
0: 700 यूरो के करीब एक किलो। धातु, घी, लवण, लवण मतलब नमक, गुड़, चीनी, चंदन, कुमकुम, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, कपूर, फलवा, विभिन्न अन्नों से तुलादान किया जाता है। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री को कृष्ण पक्ष की तृतीया को कुमकुम, कुमकुम जानते हैं?
1: कुमकुम बोले तो हल्दी?
0: नहीं नहीं, हाँ, कुमकुम, कुमकुम एक हल्दी भी होता है और एक लाल लाल जो
1: सिंदूर की तरह
0: टाइप का होता है। हाँ, लवण, नमक और गुड़ का तुलादान करना चाहिए। कुमकुम के स्थान पर कुछ लोग हल्दी दे देते हैं, लेकिन कुमकुम एक लाल जो होता है, कुमकुम
1: सिंदूर की तरह।
0: तुलादान की महिमा क्या है? तुलादान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पितृ हत्या व झूठी गवाही जैसे अनेक पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। तुलादान करना जरूरी है कि अगर ये सब पापों से मुक्त होना है तो ये सिर्फ चीज करनी चाहिए।
1: तो कितने लोग जाने अनजाने में ये गलतियां तो किए होंगे, झूठी गवाही दे होंगे।
0: चाहे सब लोगों को तुलादान करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग मामा को तुलादान कराते हैं आज। आधी व्याधि, ग्रह पीड़ा व दरिद्रता के निवारण के लिए तुलादान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसको करने से मनुष्य को अपार मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर किसी को बीमारी है या गरीबी है तो उसको तुलादान जरूर करना चाहिए, तुरंत उसका असर होता है। यदि निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवत प्रण बुद्धि से तुलादान किया जाए तो तुला पुरुष का दान करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से, मतलब हमको कोई इच्छा नहीं है, दान कर लिया जाए तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ प्राप्त होती है। अनेक कल्पों तक वहाँ रहकर जब पुष्यों के क्षय होने पर पुनः जन्म लेता है तो धर्मात्मा राजा बनता है। अगर आपको चाहे राजा बने, जिसको चाहे राजा बने, तो उसको बगैर निस्वार्थ भाव से, मतलब ये नहीं कि मैं ये तुलादान कर रहा हूँ तो मेरा ये काम हो जाए, कोई भाव न रहा, तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जब वहाँ बहुत समय तक रहता है तो इसके बाद जब उसका दोबारा कभी जन्म हो तो वो राजा बनता है।
1: यानी कि राजा के घर से जन्म लेंगे,
0: राजा बनेगा उस,
1: राजा बनेंगे।
0: हाँ, तो कितना महत्व है तुलादान
1: का। बात है दोस्तों, ये बात हो जाता है कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से होता है, और आत्मा धर्म से होता है। तो ये कुछ हम सब ये संदेश जो आपके लिए रख देते हैं इसमें। पर राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का संदेश काफी है। राधा कैसे ना जले,
0: हाँ,
1: तो चला देते हैं राजेंद्र।
0: मधुबन में जो है अभी सुनेंगे तो सारा समझ जाएंगे।

0: राधा कैसे न जले, मधुबन में अगर सब लोग आ जाएंगे तो राधा तो जलेंगी जलेंगी। बहुत ही सुंदर जो अभी हमने गीत सुना है। बात चल रही थी तुलादान की, तो तुलादान में इतना ही नहीं, इस प्रसंग को पढ़ने या सुनने से, तुलादान को देखने या स्मरण करने से भी मनुष्य को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। यदि किसी कामना से तुलादान किया जाए तो वह दाता की मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। किस स्थान पर करे तुलादान, तुलादान किस जगह पर करना चाहिए? तीर्थ स्थान में, मंदिर में, गौशाला में, बगीचे में या पवित्र नदी के तट पर, अपने घर पर भी कर सकते हैं। पवित्र तालाब के किनारे या किसी पवित्र वन में तुलादान करना श्रेष्ठ होता है। इन जगहों पर तुलादान कर सकते हैं। भारत में द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश मंदिर के पास एक तुलादान मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा जी ने इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का तुलादान किया था। इस मंदिर में सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए तुलादान किया जाता है। कामना रहित या दान धर्म परम श्रेष्ठ सोपान है। जो दान धर्म में दृढ़ रहता उनका सब दिन कल्याण होता है, ऐसा आचार्य विजय जी के शब्दों में डॉक्टर हूँ कह रहे हैं। तो मैंने देखा है द्वारिका मंदिर के बगल में एक जगह पानी का दान होता है।
1: पानी का दान?
0: हाँ, तो वहाँ पे लोग पानी का दान करते हैं और कहते हैं कि एक टैंकर मेरी तरफ से, दो टैंकर, इस प्रकार से दान होता है। द्वारिका मंदिर जो द्वारिकाधीश है उसके बगल में, द्वारिकापुरी के एकदम उसमें समुद्र के किनारे में है वहाँ पे, और उसके बगल में गोपी चंदन है। वो जो मिट्टी है वो सारी गोपी चंदन के नाम, वहीं से सब चंदन आता है। वो मिट्टी उठा लो एकदम, लगा लो माथे पे तो चंदन हो जाता है। चंदन है ही वो, गोपी चंदन बोलते उसको। तो इस प्रकार से सब लोगों ने बड़े ही प्रेम से वृतांत सुना तुलादान का और इसका महत्व समझा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को कुछ इस प्रकार का कष्ट रहा है, कुछ करे तो अपने अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुलादान करे या उनको अच्छा लगे तो अपने निवारण कर सकते हैं। तो क्यों ना संजय जी, आप कुछ इस विषय में और कुछ कहना चाहते हैं?
1: राजेंद्र जी, मैं तो ये विषय को पहला बार सुना हूँ और जैसे कि आपके साथ मैंने ये और ये सारा वृतांत को सुन करके और मन में कुछ हो रहा है कि कभी अपने जीवन में तुलादान के कुछ ना कुछ तो करना आवश्यकता होता है। और उसके बारे में अभी तो पहला बार सुना हूँ, तो ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाएगा अपना जीवन में, क्योंकि ये जीवन, ये जो शरीर मिला है तो इसे बिन तन सत्संग नहीं हो सकता। तो ये शरीर जब मिला तो कुछ ना कुछ तो करना है। और ये सुंदर सुंदर संदेश जो हम सबको कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो 188 देशों तक सुना जा सकता है, हमारे विशेषज्ञों लोग जो हम सबके लिए ये सुंदर सुंदर संदेश को रखते हैं, तो हमारे सभी सुनने वालों भी इस संदेश को लेकर के और जरूर अपना लाभ उठाने को, अपना जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा सा और प्रकाश जरूर डालेंगे। क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं राजेंद्र जी, और गीत के बाद में हम फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं।
0: जो गीत के बोल हैं वो बड़ी ही सुंदर हैं, मोही रंग दो लाल,
1: मोही रंग दो लाल।
0: तो चलाया जाए,
1: चलाया जाए।

0: मोहे रंग दो लाल, बहुत ही जो सुंदर सा गीत सुना सब लोगों ने, बड़ा ही आनंद आया सबको। अभी हमारे मामा जी ने बोला है कि जो रुक्मणी मंदिर है द्वारिकाधीश के बगल में, वहाँ पे दान किया जाता है।
1: राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से और हम सबको ये सुंदर संदेश जो 16 महान दानों में से और हम सबको सुनाए, जिसमें आपने और ज़्यादा तादाद में तुला दान को निचोड़ा और हम सबको पूरा तरीका से संदेश दिया। हम अपने सुनने वालों के लिए जरूर कुछ और कहना चाहूँगा। सुनने वालों, यहाँ ये बात हो जाता कि भक्ति का भाव। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ का पूजा कर शुरू और तुम्हारे दुख दूर होंगे। यानी कि दूसरा दोस्त ने, जो कितने साल और उन्होंने पूजा किया कृष्ण भगवान का, कोई लाभ नहीं हुआ, तो दूसरा दोस्त ने ऐसा संदेश सुनाते हैं कि काली माँ का पूजा करो। और वो व्यक्ति क्या करते हैं, अगले ही दिन वे एक काली माँ का अवमूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक अवतार पर और रख दिया। यानी कि मंदिर के ऊपर एक रैक इस बना था और उस पर रख दिया और काली माँ का मूर्ति मंदिर में रख कर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके और दिमाग में ख्याल आया, जो अगरबत्ती धूपवती काली को और जलाऊंगा उसे, तो श्री कृष्ण जी भी और सुगंध होंगे। ऐसा उसके दिमाग में आया और ऐसा करता हुआ उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण जी के और मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के और मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा कि इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हारे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। तो दोस्तों, ये समझने वाले बात हो जाता है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

राजेंद्र जी, मेरी और से भी एक संदेश है, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर से किसी कुत्ते या बिल्ली को मारिए, आप देखेंगे कि वह डर कर भाग जाएगा। अब आप वही पत्थर फिर लीजिए और मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए और देखिए कि मधुमक्खियाँ आपका कैसे स्वागत करती हैं। पत्थर वही है, मारने वाले भी आप ही हैं। जानवर भाग गया क्योंकि वह अकेला था और मधुमक्खियाँ हावी हो गई क्योंकि वह समूह में थी। हमारी सामाजिक एकता सिर्फ एकता में ही है। यदि संभव हो सके तो समूह में रहिए, संयुक्त रहिए, संगठित रहिए और एक दूसरे के हित में सहभागी बनिए।

बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वाले श्रोताओं को जो इस प्रकार से हमको बड़ी अच्छी तरह से सुनते हैं और समझते हैं। मुझे लगता है कि ये सब सुन के उनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती होगी और जो ज्ञान की रोशनी है उससे तो ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। क्यों संजय जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। जैसे कि आपने ये कार्यक्रम को सुने और हमारे साथ देने वाले बबली आसरा जी, हमारे पैनल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश के माध्यम से आपके पास जरूर पहुंचे होंगे। हम जरूर ये कहना चाहूंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने ये कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

0: अभी अभी सब लोगों ने न्यूज सुना है, अब बढ़ते हैं हम अपने कार्यक्रम की ओर। तो जैसे कि अभी महेंद्र जी का तार आया था कि विषय ऐसा रहा, विशाल रहा, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। तो बीच में तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए छोड़ते हैं, नहीं तो कौन छोड़ना चाहे। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीष्म, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण। अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीष्म ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया की यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्हीं से पूछूंगा कृष्ण। फिर कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझा पाए कृष्ण, तनिक समझाओ तो। पितामह पूछ कह रहे हैं कि आप मुझे समझा नहीं पाए, थोड़ा समझाओ। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग में भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। इस प्रकार से उन्होंने अपना बात रखी। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? पितामह कह रहे हैं कि जो आपने निर्णय लिया, आगे जो परंपरा होगी इसके अनुसार गलत भी हो सकती है कुछ, तब क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुकरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो वह उचित होगा? कह रहे हैं कि जैसे आपने जो काम किए हैं, भविष्य में आने वाले लोग ऐसे आपका अनुसार काम करेंगे तो वो भी उचित नहीं होंगे। तो फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं, भविष्य तो इसमें भी अधिक नकारात्मक आ रहा है, इससे भी ज़्यादा नकारात्मक भविष्य आएगा। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब कूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यही सीखना ही होगा पितामह, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्ग दर्शाता है। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़े।
1: बिल्कुल, बस पिटारा में हाथ डाल दो और निकालो कौन सा गीत कंप्यूटर पे इस समय आप रखने वाले हैं।
0: देखते हैं शांता जी का पिटारा में। शांता जी कुछ कहना चाह रही है, कहिए, नहीं तो हम पिटारा खोल देंगे आपको इधर से।
2: हाँ, एकदम से पिटारा खोल दो।
0: तो तब तक कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: ये बात है कि आज जो ये वृतांत हम सब आज के रखे हुए हैं, और अभी जो आज का विषय है हवन का महत्व, जो वैज्ञानिक रूप से और हम सब अभी आप सभी सुनने वालों के लिए रखने वाले हैं कि वत्सख द वैज्ञानिक किसको कहते हैं शांता जी? वेतनस्काप जो जो कहते हैं खलेर द लोग जो हाँ। उसके बारे में चिंतन उसके बारे में खोज भी किए हैं, तो अभी उसके बारे में हम सब रखने वाले हैं क्योंकि हवन का महत्व ये एक बहुत अच्छा संदेश जो आज हम सब तैयार करके और हमारे विशेषज्ञ लोग हम सब के लिए रखे हैं हाँ। हम तो बस यही है कि हम प्रेषिता तौर हम लोग यहाँ पर आ जाते स्टूडियो में और ये कार्यक्रम बन जाता है हाँ। ऐसा है कि नहीं?
3: ऐसा तो है बिल्कुल है, और ये भी जो प्रसंग चल रहा है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वो जानकारी मिलते हैं जो हम हल्दी जल्दी नहीं सुनने को मिलता।
1: कुल हाँ। सही कह रहे हैं राजेंद्र जी, इस समय जो कंप्यूटर पे गीत को फिट कर दिए हैं तो चला दीजिए
0: जरूर।

0: गणपति बप्पा मोरिया परेशान करी मोई छोरिया। जैसे कि वृतांत चल रहा था कि ईश्वर कुछ नहीं करता, केवल मार्ग दर्शाता है, सब मनुष्यों को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना, यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है,
1: यही परम सत्य है। और यही परम सत्य जो अभी हम सबको आप सुना रहे हैं, और राजेंद्र जी, शांता जी इस समय तैयारी भी कर रहे हैं अपने के ओर से कुछ संदेश हम सब के लिए रखने के लिए। पर जो ये वृतांत है, इसका इसमें कुछ और संदेश है?
0: हाँ जरूर, भीष्म